नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही दी हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जागृति बुन आपके कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा खेतर मंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ू जीवन है। होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा,
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
0: वागड़ रेडियो

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा अमर सब भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपडू सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणी मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते तो आज कार्यक्रम में अमारी अब तक की बातचीत नो विषय है कि धान नी रोपाई ने बाद आपणा ने कई कई बातों नु ध्यान रखवानी जरूरत है। तो भाई बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की खणाका नी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे करा आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमरता रहसु आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वाग रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈ બોનું ગીત તો આશુ પૂરું નણા ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરો હ અમારે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મે જેમ કે ભાઈ બોનું ગીત કે પહેલે અમે આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ કે ધાનની રોપાઈને બાદ આપણે જે ભાઈ બોન હે એનાને કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું હે તો ભાઈ બોનું અણા વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી તો સૌથી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર જી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: જી ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આપ હમારી કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે આજ જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે ધાન કી રોપાઈ કે બાદ કિન કિન બાતો કા હમારી કિસાન ભાઈ બહેનો કો ધ્યાન રખને કી જરૂરત હૈ ક્યોંકિ હમ દેખતે હૈ કે અગર હમને રોપાઈ કર દી હૈ ઓર હમ સમય સમય પર નિરીક્ષણ નહીં કરેંગે છોટી છોટી જો સમસ્યાએ હોતી હૈ ઉનકા ધ્યાન નહીં રખેંગે તો કઈ સમસ્યાએ હમે ધાન કી ખેતી મે દેખને કો મિલ સકતી હૈ તો સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે ધાન કી ખેતી મે રોપાઈ કે બાદ હમે કિન વિશેષ બાતો કા ધ્યાન રખના ચાહીએ
1: જી દેખે જબ બાત હમારે યહાં ઇસ ક્ષેત્ર કી ધાન કી આતી હૈ તો જબ હમ બાત ધાન કી કરતે હૈ તો હમારે ક્ષેત્ર મે કઈ પ્રકાર કી વેરાઈટી હૈ કિસ્મે હૈ ઉસકી ધાન હોતી હૈ તો દેખે ધાન મે કુછ ચીજે હૈ જો હમે દેખને કી જરૂરત હોતી હૈ તો વો જો રોપાઈ સે લેકર જો હૈ આપકા જો કટાઈ તક સારા ધ્યાન રખના પડતા હૈ લેકિન શરૂઆત કે જો 30 સે 40 દિન હૈ વો કાફી મહત્વપૂર્ણ હોતે હૈ ધાન કો દેખને કે લિયે ઓર ઉસકા નિરીક્ષણ કરને કે લિયે
0: બિલકુલ
1: તાકી ઇસ સમય જો પૌધો કી જો સહી પહેચાન પાણી ખરપતવાર ઓર કીટ જૈસે નિયંત્રણ હૈ ઉનકા ધ્યાન રખા જા સકતા હૈ ઓર યે સભી હૈ જો હમારે અવલોકન કરને સે ખેત મે જાકર યે દેખા જા સકતા ઓર હમે સમજ આ સકતા હૈ કી હમ ક્યા કરના ચાહિયે
0: બિલકુલ
1: તો જૈસે રોપાઈ કી હમ બાત કરતે હૈ તો જબ આપને ધાન રોપ દી તો ઉસકે 7 દિન તક હૈ વો મહત્વપૂર્ણ હોતે હૈ પહેલે 7 દિન તો ઇન 7 દિન મે સબસે પહેલે ચીજે દેખને કી વો યે હૈ કે દેખે કે સભી પૌધે સહી જમ ગયે યા નહીં જમે પહેલી ચીજ તો યે કે આપને રોપાઈ તો કર દી
0: બિલકુલ
1: લેકિન સારે પૌધે જમ રહે હૈ નહીં જમ રહે વો દેખે દૂસરા જો પૌધે અગર કોઈ સૂખ ગયે હૈ યા જગહ ખાલી હો ગઈ જૈસે ખાલી ખાલી જગહ દિખતી હૈ તો આપકો વાપસ સે વહાં પે નયે પૌધે લગાને કી જરૂરત હૈ
0: બિલકુલ
1: અગર આપ એસા નહીં કરતે હૈ તો આપકી વો જગહ ખાલી રહ જાયેગી ઓર ઉત્પાદન મે ઉસકા જો હૈ દેખને કો મિલેગા પ્રભાવ इसके साथ ही जो कमजोर पौधे हैं उनकी पहचान करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पौधे कमजोर क्यों हैं तो ये बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें हैं आपके उत्पादन पे प्रभाव डालती है
0: बिल्कुल
1: इसके साथ में हम जैसे प्रबंधन की बात करते हैं रोपाई के बाद तो इसमें एक तो ये है कि हमेशा जो धान है हम सोचते हैं कि गहरे पानी की जरूरत होती है या बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है ऐसा नहीं होता है इसमें जो है आवश्यकता अनुसार पानी की ही जरूरत होती है तो हमें ध्यान रखें कि 7 दिन के अंदर जैसे 2-3 दिन हो गए रोपाई के तो उसमें हल्का पानी रखें अगर बारिश आ रही है अगर ज्यादा बारिश हो गई तो आपको उस पानी को निकाल देना है
0: बिल्कुल
1: ज्यादा भरे तो बाकी हल्की जो है आप रखिए और ध्यान रहे कि पानी है 2 से 5 सेंटीमीटर जो है वो ही पर्याप्त होता है इससे ज्यादा अगर लगता है तो आप उसको निकासी के माध्यम से निकाल दें नहीं तो आपकी फसल खराब होने का चांस रहता है इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है कि बारिश नहीं होती है और होती है तो बहुत तेज हो जाती है तो इन दोनों कंडीशन में भी हमें ध्यान देना है कि नहीं हो रही है तो आपको अगर आवश्यकता है अगर उसमें नमी खत्म हो रही है तो आपको पानी देने की जरूरत है लेकिन आप हल्का पानी दें आवश्यकता अनुसार इसके साथ में अगर ज्यादा बारिश हो गई तो आपको उसकी निकासी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी
0: बिल्कुल
1: तो इससे क्या होगा कि जब हम ज्यादा पानी को बाहर निकाल देते हैं या आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं तो इससे ये होता है कि तो आपकी जड़ें मजबूत होती है दूसरा है जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है वो अच्छे से बढ़ते हैं और इसमें आपके पानी की बचत भी होती है तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए
0: जी हाँ।
1: इसके साथ में जैसे आप देखोगे तो कई बार क्या होता है कि धान की रोपाई तो हमने कर दी लेकिन उसमें बहुत प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं क्योंकि स्वाभाविक है बारिश का मौसम है तो खरपतवार तो होंगे ही तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए खरपतवार जो है अगर देखते हैं आप आपके खेत में तो 15 से 20 दिन के अंदर आप जो है देखेंगे खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं
0: जी जी
1: और इन दिनों में हमें देखने की आवश्यकता है तो इस दौरान जो है आप जो एक तो हमारे यहाँ पे कल्पा निकालते हैं आप उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो दूसरा है कि कल्पा के माध्यम से अगर नहीं होता है तो कुछ जो है हाथ से आपको निकालना पड़ेगा ताकि आपकी फसल पे उसका प्रभाव ना पड़े क्योंकि जब जब खरपतवार और फसल दोनों साथ में होती है तो दोनों में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है उनमें।
0: जी जी।
1: तो कई बार क्या होता है कि खरपतवार है आपकी फसल को कमजोर कर देते हैं और उससे आपकी पैदावार बहुत कम होगी, तो ये हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही जैसे अगर आप निराई गुड़ाई समय समय पर करते हो तो इससे बहुत सारा जो है प्रभाव पड़ता है अच्छे के लिए, जैसे आपका उत्पादन तो अच्छा होगा ही लेकिन पौधों की ग्रोथ है वो एक अच्छी होगी, मिट्टी जो है उसमें हवा का जो संचार है वो अच्छे से होगा।
0: जी हाँ।
1: जड़ों की जो विकास है वो बहुत अच्छे से होगा अगर आप वहाँ करते हो तो, और इसमें क्या कि पौधों को पोषण भी बहुत अच्छे से मिलता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि धान की रोपाई में हमें सही देखभाल कैसे करनी, रोपाई के बाद हमें सही देखभाल कैसे करनी है, जिसमें आपने हमें बताया कि रोपाई के बाद 7 दिन तक हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, पानी का सही प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण हमें कैसे करना है। यही सर अब बात आती है पोषण प्रबंधन और कीट रोग की निगरानी की, तो ये हमारे किसान भाई बहनों को कैसे करनी है।
1: तो जैसे आपने बताया अभी कि पोषण प्रबंधन कैसे करें और कीट प्रबंधन कैसे करें।
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए पोषण प्रबंधन की हम जहाँ बात करते हैं तो पोषण हमारी सभी फसलों को जरूरी होता है, उसी तरह से धान को भी जरूरी होता है।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें आप देखोगे कि हमारे क्षेत्र में हम बात करते हैं हमारे परंपरागत खाद की, तो उसके माध्यम से हम पोषण प्रबंधन करते हैं, परंपरागत दवाएं जो रासायनिक उपयोग नहीं करते हैं लेकिन हम घरेलू स्तर पर बनाकर उनका उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जिसमें मुख्य प्रकार से आप देखोगे कि अगर खाद की आवश्यकता तो वर्मी कंपोस्ट या उखेड़ा का खाद हम डालते हैं जो गोबर से तैयार होता है।
0: जी जी।
1: तो वो हमें समय समय पर देखना होगा कि आवश्यकता है तो आपको डालना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी फसल का ग्रोथ अच्छा होगा और पैदावार भी अच्छी होगी।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह अगर जैसे बात कर जीव अमृत है, घन जीव अमृत है, गोमूत्र है, कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है, तो इनका जो डालना है वो स्वाभाविक है लेकिन वो आवश्यकता अनुसार, अगर आप कहीं ज्यादा डाल देते हो तो हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए।
0: जी जी।
1: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है पोषण की दृष्टि से। दूसरा है कि जैसे आपने बोला कि कीट और रोग है उसकी निगरानी कैसे रखें।
0: बिल्कुल।
1: तो हमेशा क्या होता है कि बारिश के मौसम में कुछ समय ऐसा होता है कि बहुत प्रकार के कीट और रोग लगना शुरू हो जाते हैं या लग जाते हैं, तो इस स्थिति में हमें सबसे पहला काम ये है कि हर 3 से 4 दिन आप अपने खेत का अवलोकन करते रहें।
0: बिल्कुल।
1: अगर इस तरह का कोई प्रकोप आपके सामने आता है तो उसके बाद में फिर आप जो है उसकी इलाज के लिए या उसके उपचार के लिए आप आगे कदम बढ़ाएं। अगर मुख्य तौर से देखें तो आपको देखेगा कि पत्तियां मुड़ रही है, अगर हम रोगों की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, तो दूसरा है पत्तियां पीली पड़ जाती है, सूख जाती है, तना है वो आपको बीच में से कटा हुआ नजर आएगा कि उसमें एक कीट लग जाता है। ये जो कीड़े होते हैं उनकी संख्या ज्यादा तो नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से आपको उसको देखना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: तो यहाँ पे क्या है देखोगे आप तो जो हमारे धान है उसमें जो तना को छेदने वाला जो छेदक होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कई बार लग जाता है।
0: जी जी।
1: तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि एक तो हमारे जो परंपरागत दवाइयां हैं जो हम घर पर तैयार करते हैं उनका उपयोग करें, जैसे हम दसपर्णी की बात करते हैं, हम कंडा पानी की बात करते हैं, हम जैसे नीम का घोल की बात करते हैं, तो इनका उपयोग करें आप। 7 दिन में आप छिड़कते रहे तो कीट है जो हानिकारक है वो वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कि जैसे अगर ज्यादा दिक्कत है तो फिर आप जिस 3 से 4 दिन के उसमें भी अंतराल में भी छिड़क सकते हैं, तो उसकी आवश्यकता अनुसार देखें, लेकिन ये है कि ज्यादा ना छिड़के उसका भी ध्यान रखें क्योंकि ज्यादा नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ में जैसे हम जो वर्षा पानी की बात करते हैं तो वर्षा का पानी है उसमें भी अगर ज्यादा भरा रहता है तो वहां पे बहुत प्रकार के कीड़े आके बैठने लगते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा तो नहीं भरा है, अगर ज्यादा है तो उसके लिए आप उसका प्रबंधन करें निकालने की। दूसरा कई बार क्या होता है कि कटाव लगना शुरू हो जाता है खेतों में, तो उस कटाव को रोकने के लिए आप पहले से ही जो हो जैसे हम करते हैं परंपरागत तरीके से तो उसको पहले से ही रोके आप, ताकि जो खेत का जो पोषण है वो बहकर कहीं और ना जाए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, यही अब बात आती है कि रोगों की पहचान कैसे हमारे किसान भाई बहनों को करनी है और किस तरीके से आदिवासी जो किसान हैं वो पारंपरिक उपाय अपनाकर इस समस्या से बच सकते हैं।
1: जी। तो अगर हम बात करते हैं जैसे पहचान की, तो पहचान तो सबसे अच्छा संसाधन है हम खुद हैं, कि हम खुद वहाँ पे जाके हमारे खेत का अवलोकन करें और हमें पता होता है कि पहले से ही कि कौन कौन से कीट है वो वहाँ पे लग रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उसको आपको पहचान करना है। पहचान करने के बाद में आपको देखना है कि कौन सी दवा है जो हम बनाकर उसमें दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर कम प्रभाव दिखता है तो आप 10 पर्णी छिड़क सकते हैं, अगर ज्यादा प्रभाव दिखता है तो 10 पर्णी को भी आप बार बार छिड़क सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह आपके जो नीम आधारित जो दवाइयां हमारी उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि वो कीट है वो ज्यादा प्रकोप नहीं रहेगा उनका और धीरे धीरे वो चले जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो इसके साथ में जैसे पत्ती मूड़क की बात करें, पत्तियां मुड़ जाती है, उसके जो अंदर क्या होता है कीड़ा लग जाता है पत्ती के, जो हरे रंग को खा जाता है वो, तो उस तरह से अगर है तो यहाँ पे आपकी नीम आधारित दवाई है वो बहुत अच्छे से काम करेगी।
0: जी जी।
1: अगर जैसे फफूंद जैसे लग जाती है, हम फफूंद जैसे बोलते हैं जो जड़ों में होती है, अगर ऐसा होता तो वो क्या होता है निचला भाग सूखने लगता आपका जड़ों के पास में, तो इस दौरान क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या शत्रु कीट जो होते हैं उनका प्रकोप ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो है 10 पर्णी का नीम आधारित या कंडा पानी अगर आप देते हैं तो ग्रोथ के साथ साथ में कीड़ों का प्रबंधन भी होगा। तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे हमारे क्षेत्र की जो पारंपरिक उपाय है तो उसकी बात करते हैं, तो यहाँ गोबर खाद का उपयोग करना, कंपोस्ट है या उकेड़ा है वो हमें ध्यान देना चाहिए, वो समय समय पर करें, वर्षा जल है उसको खेत में रोके, व्यर्थ ना बहने दे। इसके साथ में जैसे खेत की मेड़ों पर घास या स्थानीय पेड़ सुरक्षित रखें ताकि कटाव जैसी स्थिति पैदा न हो। दूसरा कि जैसे मिश्रित खेती और परंपरागत खेती को बढ़ावा दे। इसके साथ में स्थानीय धान की किस्में जो है वो उसका संरक्षण करें और उनको उगाए।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हम परंपराओं से जानते हैं कि कौन से कीट लगते हैं, कैसे प्रबंधन करता है, तो हमें उन्हीं विधियों को अपनाते हुए हमारा जो धान की खेती है उसका प्रबंधन करना है। और अगर आप सही से प्रबंधन करेंगे तो आपकी उपज है वो बहुत बेहतर होगी और यहाँ पे हमारे जो परंपरागत किस्में हैं उनका भी संरक्षण होगा।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: બાયન બોનો જેમ કે આપણે આપણા વ્યાસમાં માંગીલાલ જે જોડે તક હતા ને એણાએ આપણાને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા આકાની વાતે બતાડી હે કે ધાનની રોપાઈને બાદ આપણાને હરતી રોજે ખેતરનું નિરીક્ષણ કરવું હે, પોષણનું પ્રબંધન કરવું હે, કીટનું પ્રબંધન કરવું હે ને ઘણા આકાની વાતનું ધ્યાન રાખવાની જરૂરત હે। આશા કરું હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીત નિમોરે પડો સૂટા।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार कीजिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम बच्चों के व्यक्तित्व विकास से जुड़े एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कशिश, जो उन्हें केवल एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज का हमारा विषय है बच्चों में सेवा और सहयोग की भावना कैसे विकसित करें।
0: जी हाँ,
1: आज का समय श्रोता साथियों तेजी से बदल रहा है। हर व्यक्ति अपनी पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारी में व्यस्त है, और बच्चों का अधिकांश समय जो है स्कूल, कोचिंग, मोबाइल और टीवी के बीच बीतने लगा है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में एक चिंता की बात यह है कि कहीं बच्चे केवल अपनी सफलता तक ही सीमित न रह जाएं। यदि बचपन से ही उनमें दूसरों की मदद करने और मिलजुल कर काम करने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की भावना विकसित हो जाए, तो वे जीवन भर संवेदनशील, जिम्मेदार और सहयोगी नागरिक बनते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे अभिभावकों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि शुरुआत में हम पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम का विषय काफी महत्वपूर्ण है। बात कर रहे हैं बच्चों में सेवा और सहयोग की भावना हम कैसे विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सहयोग और सेवा का मतलब केवल किसी बड़ी संस्था से जुड़कर समाज सेवा करना नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है अंजलि जी घर की छोटी छोटी बातों से। जब बच्चा अपनी माँ की रसोई में छोटी सी मदद करता है, पिता के साथ घर का कोई काम करता है, दादा दादी को दवा ला कर देता है, छोटे भाई बहन का ध्यान रखता है या फिर अपने मित्र की पढ़ाई में सहायता करता है, तभी श्रोता साथियों उसके भीतर सेवा की भावना विकसित होने लगती है।
1: बिल्कुल।
0: और ये छोटी आदतें आगे चलकर बड़े संस्कार बन जाती है। जैसा कि अंजलि जी हमने ये बात सुनी है और हमारे श्रोता साथी भी जानते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद कर रहे हैं साथियों, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, पड़ोसियों के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, तो बच्चे भी इन्हीं मूल्यों को सहज रूप से अपनाने लगेंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए माता पिता को केवल बच्चों को सीख देना ही नहीं बल्कि स्वयं भी सेवा और सहयोग का उदाहरण बनना चाहिए।
1: जी हाँ, यही कशिश बात आती है कि आज कई बार देखा जाता है कि माता पिता बच्चों को केवल पढ़ाई और प्रतियोगिता पर ध्यान देने के लिए ही कहते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये चीजें बहुत जरूरी है मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल आगे निकलना नहीं है बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। जो बच्चा सहयोग करना सीखता है वह टीम में बेहतर काम करता है।
0: बिल्कुल।
1: मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है।
0: जी हाँ साथियों,
1: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि घर बच्चों के पहली पाठशाला है। यदि माता पिता बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे कि अपना बिस्तर ठीक करना, अपने खिलौने व्यवस्थित करना, भोजन की मेज लगाने में मदद करना, पौधे को पानी देना, घर की साफ सफाई में सहयोग करना और उनमें जिम्मेदारी और सहयोग करना, तो उनमें जिम्मेदारी और सहयोग दोनों का विकास होता है। इससे उन्हें यह समझ में आता है कशिश कि परिवार एक टीम की तरह होता है जहां हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो दादा दादी और नाना नानी भी बच्चों में सेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे साथियों? तो उनके जीवन के अनुभव, संघर्ष की कहानियां और पारिवारिक संस्कार जो होते हैं वो बच्चों को दूसरों के प्रति सम्मान, धैर्य और सहयोग का महत्व सिखाते हैं।
1: जी जी
0: अंजलि जी, उनके साथ समय बिताने से बच्चों में अपनापन और संवेदनशीलता बढ़ती है और साथ ही विद्यालय में भी बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि जब बच्चे समूह में गतिविधियां करते हैं, खेलते हैं, मिलकर परियोजनाएं तैयार करते हैं या किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी साझा करते हैं, तो वे एक दूसरे की बात सुनना जानते हैं।
1: जी हाँ,
0: जिम्मेदारी बांटते हैं और मिलकर लक्ष्य पूरा करना भी सीखते हैं। साथियों, यही अनुभव आगे चलकर उनके सामाजिक जीवन में बहुत काम आता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।
2: चिटिकी टक टक चिक टक चिटिकी टक।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि दादा दादी और नाना नानी बच्चों में सेवा की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं और साथ ही विद्यालय भी किस तरीके से बच्चों के अंदर सहयोग की भावना विकसित करने में मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही कहना चाहेंगे कि सेवा की भावना केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कशिश कि पशु पक्षियों के प्रति दया रखें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, पानी और भोजन की बर्बादी न करें और पर्यावरण की रक्षा करें। जब बच्चा प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है, तब उसके भीतर व्यापक सामाजिक चेतना विकसित होती है।
1: जी हाँ।

0: आज के डिजिटल युग में श्रोता साथियों एक चुनौती यह भी है कि बच्चे स्क्रीन पर अधिक समय बिताते हैं और वास्तविक सामाजिक संबंध कम बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवार को चाहिए श्रोता साथियों कि बच्चों को ऐसे अवसर दें जहां वे लोगों से मिलें, सामूहिक खेल खेलें, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें, दूसरों की मदद करने का अनुभव प्राप्त करें। इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है और समाज के प्रति जुड़ाव भी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों तो बच्चों में सेवा और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए उनकी हर छोटी छोटी मदद की सराहना आपको करनी चाहिए। यदि बच्चा किसी की सहायता करता है, अपना सामान साझा करता है या बिना कहे कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा माता पिता को अवश्य करनी चाहिए अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: इससे बच्चा वह समझता है कि अच्छे कार्यों का महत्व अच्छा होता है, वह भविष्य में भी ऐसे कार्य करने के लिए वह प्रेरित होता है। साथ ही दोस्तों ये भी जरूरी है कि बच्चों को ये समझाया जाए कि सेवा का अर्थ दया दिखाना नहीं है बल्कि समानता और सम्मान के साथ किसी का साथ देना भी है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चा ये समझता है अंजलि जी कि हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है तब उसके भीतर करुणा, सहानुभूति और सहयोग की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। ऐसे में दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि सेवा और सहयोग कोई एक दिन में सिखाई जाने वाली बात नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों, पारिवारिक वातावरण और अच्छे उदाहरणों और निरंतर अभ्यास से विकसित होने वाला एक जीवन मूल्य है। यदि हम बचपन में ये बीज बच्चों में बो देंगे तो भविष्य में ये बच्चे एक संवेदनशील, जिम्मेदार और सहयोगी समाज का निर्माण कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बच्चों के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान केवल उसकी बुद्धिमत्ता, अंकों या उपलब्धियों से नहीं होती बल्कि कशिश इस बात से होती है कि वे दूसरों के प्रति कितना सम्मान और संवेदनशीलता और सहयोग का भाव रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में सफलता तब और अधिक सार्थक बन जाती है श्रोता साथियों जब उनके साथ मानवीय मूल्य भी जुड़ जाते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारी, जिम्मेदार और सरहृदय भी बने तो हमें बच्चों से ही उनके भीतर सेवा और सहयोग की भावना का विकास कराना होगा।
1: बिल्कुल,
0: सेवा की भावना किसी उद्देश्य से नहीं आती बल्कि रोजमर्रा के अनुभव से विकसित होती है। जब बच्चे घर में बड़ों का सम्मान करते हुए दिखते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तब वे बिना कहे ही इन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें अच्छे उदाहरण देना।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि सेवा केवल आर्थिक सहायता का काम नहीं है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना और किसी मित्र की पढ़ाई में मदद करना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और घर के कामों में हाथ बटाना, ये भी एक सच्ची सेवा का ही रूप है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चे इन छोटे छोटे कार्यों का महत्व समझते हैं तब उनके भीतर यह विश्वास विकसित होता है कि साथियों हर व्यक्ति अपने स्तर पर समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर जोर दिया जा रहा है अंजलि जी, तब बच्चों को ये सिखाना जरूरी हो जाता है कि आगे बढ़ने का सही मतलब क्या है।
0: बिल्कुल,
1: आप उन्हें बताएं कि आगे बढ़ने का सही अर्थ दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं होता बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी का हाथ थामकर उससे भी आगे बढ़ने का अवसर देना होता है।
0: जी जी,
1: यही सोच श्रोता साथियों उन्हें एक अच्छा मित्र, अच्छा परिवार सदस्य, अच्छा नागरिक और भविष्य का संवेदनशील नेता बनाती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाएं जहां मैं से अधिक हम का महत्व हो, जहां सहयोग को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति माना जाए और जहां बच्चों को यह महसूस हो कि किसी की मदद करना केवल एक अच्छा काम नहीं है श्रोता साथियों बल्कि एक सुंदर जीवन जीने का तरीका है। याद रखिए कि बच्चे वही बनते हैं जो वे रोज देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। यदि हम उन्हें बचपन से सेवा, सहयोग, करुणा और अपनत्व के संस्कार देंगे तो वे बड़े होकर केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का सहारा बनेंगे। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर विश्वास से भरे समुदाय, संवेदनशील समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हम हर बच्चे के मन में सेवा का एक छोटा सा बीज आज अवश्य बोएं ताकि आने वाले कल में वही बीज मानवता, सहयोग और सद्भाव का विशाल वृक्ष बनकर पूरे समाज को छाया, शक्ति और नई दिशा दे सके।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इन्हीं बातों के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातें हमारी ढेर सारी हो चुकी है, समय भी अब हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: तो श्रोता साथियों विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम से हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vakthara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में अपने नियत समय पर ही एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर युवा के जीवन से जुड़ा हुआ होता है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि क्या युवा अब सपने कम और दबाव ज्यादा महसूस करते हैं। श्रोताओं, कभी युवावस्था को सपनों की उम्र कहा जाता था। ये वो समय माना जाता है कशिश, जब युवा अपने भविष्य की कल्पना करते हैं,
0: बिल्कुल
1: बड़े लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उत्साह के साथ वो आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन आज का दौर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज के युवाओं के पास अवसर तो पहले से अधिक है, लेकिन साथ ही चुनौतियां और दबाव भी कई गुना बढ़ गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आज का युवा सचमुच अपने सपनों को जी रहा है या फिर वो दबावों के बोझ तले अपने सपनों को कहीं खोता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर हमारी बातें जरूर रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ में। लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: जी हाँ, तो आप सभी बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं, बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है। बात कर रहे हैं कि आज के हमारे युवा साथी क्या सपने कम और दबाव ज्यादा महसूस करने लगे हैं। साथियों, जो प्रश्न है वो हमारे युवा साथियों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं जागृति जी, वो देश की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनके सपने, उनकी सोच, उनका उत्साह, साथ ही उनका आत्मविश्वास ही समाज और राष्ट्र के भविष्य को दिशा देते हैं। कहा जाता है कि युवावस्था वह समय है जब इंसान सबसे बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए सबसे अधिक मेहनत भी करता है। लेकिन साथियों, आज का दौर पहले जैसा नहीं रहा। तकनीक ने जीवन को आसान तो बनाया है, अवसर भी बढ़े हैं, नई नई संभावनाएं सामने आई हैं, लेकिन इसके साथ ही युवा साथियों के जीवन में मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के साथ साथ असुरक्षा भी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवावस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान और संभावनाओं से भरा चरण होता है। इसी समय व्यक्ति अपने भविष्य की दिशा भी तय करता है। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को बताते हैं कि युवाओं के कई सारे सपने होते हैं
0: जी।
1: कि वो कभी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, मतलब उनके मन में ये रहता है कि हम कुछ न कुछ जरूर बने।
0: बिल्कुल,
1: और वो सपने भी देखते हैं। श्रोताओं, सपने ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब सपनों की जगह डर, चिंता और असफलता का भय ले लेता है, तब युवाओं का आत्मविश्वास प्रभावित होने लगता है। कशिश
0: जी,
1: आज हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा अपने मन की सुनने की बजाय परिस्थितियों और अपेक्षाओं के दबाव में निर्णय लेने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पढ़ाई हो, नौकरी हो या फिर व्यवसाय, हर जगह आगे निकलने की होड़ दिखाई देती है। युवा ये महसूस करता है कि यदि वो दूसरों से पीछे रह गया तो उसका भविष्य कैसा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार बैठते हैं कशिश, और अवसर सीमित होते हैं। ऐसे माहौल में युवा लगातार तनाव महसूस करते रहते हैं। वो अपने सपनों के बारे में कम और परिणामों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं।
0: जी जी,
1: प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है श्रोताओं, लेकिन जब ये आत्मविश्वास को कम करने लगे तब ये दबाव का रूप भी ले लेती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यहीं अगर बात करें कि युवाओं पर बढ़ते दबाव के कारण क्या हैं, तो सबसे पहला कारण तो यही है साथियों कि पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव उन पर रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आज लगभग जैसा कि आपने बताया कि हर क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ चुकी है। छोटी सी नौकरी के लिए भी हजार उम्मीदवार आवेदन करते हैं। ऐसे में युवाओं को ये लगता है कि यदि वे सफल नहीं हुए तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: साथियों, यही सोच कई बार पढ़ाई को सीखने का माध्यम नहीं बल्कि तनाव का कारण बना देती है। हम देखते हैं कि साथ साथ परिवार की अपेक्षाएं भी होती है। जैसे कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल बने।
1: जी हाँ,
0: लेकिन कई बार ये अपेक्षा इतनी अधिक हो जाती है जागृति जी कि हमारे युवा साथी स्वयं को लगातार दबाव में महसूस करने लगते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो परिवार की उम्मीदें टूट जाएंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल कशिश, क्योंकि भारतीय समाज में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की हर हमेशा कामना करते रहते हैं
0: जी।
1: लेकिन कई बार यही अपेक्षाएं अनजाने में दबाव का कारण भी बन जाती है। कुछ युवा अपने मनपसंद क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन परिवार उनसे किसी दूसरे क्षेत्र को चुनने की अपेक्षा करता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे जो युवा है वो अपने सपने और परिवार की उम्मीदों के बीच में फंस जाते हैं
0: जी। हाँ,
1: जब संवाद की कमी हो जाती है तब ये स्थितियाँ और भी कठिन हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, हम युवाओं को चाहिए कि वे अपने परिवार वालों से खुलकर बात करें, और परिवारों को भी युवाओं की रुचियों को समझने का प्रयास करना होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर बात करें समाज में तुलना की संस्कृति की, तो दोस्तों आज तुलना जीवन का हिस्सा बन चुकी है। किसी से अधिक अंक लाने की तुलना, किसी की बड़ी नौकरी की तुलना, किसी का बड़ा घर है तो किसी की अधिक कमाई को देखकर तुलना करना।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, जब युवा लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं, जिसके कारण वे दबाव में आ जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। साथ ही सोशल मीडिया का प्रभाव भी एक कारण है साथियों, यानी कि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी सफलता, खुशी और उपलब्धियां दिखाता है।
1: जी हाँ,
0: युवा जब दूसरों की चमक दमक देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए हैं। वास्तविक जीवन साथियों और सोशल मीडिया की दुनिया में अंतर समझ न पाने के कारण मानसिक दबाव युवाओं में बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण उनका स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि क्या युवा अब सपने कम और दबाव ज्यादा महसूस करते हैं, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी आज के इस विषय पर। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुख करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या युवा अब सपने कम और दबाव ज्यादा महसूस करते हैं,
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आज रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: नई तकनीकें आ रही है, अनेक पारंपरिक नौकरियां बदल रही है, इससे युवाओं के मन में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। कशिश
1: जी हाँ।
0: कई युवा ये सोचकर परेशान रहते हैं कि जो पढ़ाई वे कर रहे हैं, क्या उससे उन्हें भविष्य में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चिंता उनके सपनों की ऊर्जा को कम कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में युवाओं को सीखते रहने और नए कौशल विकसित करने पर ध्यान देना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी। साथ ही अगर बात करें तो लगातार तनाव और दबाव का असर केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं रहता साथियों, बल्कि इसका प्रभाव हमारे युवा साथियों के आत्मविश्वास पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है उनमें, सत्य रचनात्मक सोच प्रभावित होती है, रिश्तों में दूरी आने लगती है। जागृति जी, जीवन का आनंद युवाओं के जीवन में कम होने लगता है, छोटी असफलताएं भी बहुत बड़ी होने लगने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण वे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और निरंतर तनाव में ही रहते हैं।
0: जी हाँ, और हम कह सकते हैं कशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, आज कई परिवार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में युवा जल्दी कमाने और परिवार की सहायता करने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: कई बार आर्थिक परिस्थितियां युवाओं को अपने सपनों से समझौता करने के लिए मजबूर कर देती है। वे अपनी रुचियों के बजाय ऐसे विकल्प चुनते हैं जो तुरंत आए उन्हें प्रदान कर सके।
1: जी हाँ,
0: हालांकि जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है श्रोताओं, लेकिन सपनों को पूरी तरह छोड़ देना समाधान नहीं है, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं कि दबाव का सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि तनाव, चिंता, आत्मविश्वास की कमी और निराशा जैसी समस्याएं युवाओं में बढ़ती दिखाई दे रही है। और कई युवा अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करते हैं, वे सोचते हैं कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं श्रोता साथियों, बल्कि समझदारी है।
1: बिल्कुल,
0: मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। साथ ही श्रोता साथियों, ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या आज युवा सपने देखना छोड़ रहे हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, आज भी युवा बड़े सपने देखते हैं, वे दुनिया बदलना चाहते हैं, नई तकनीक बनाना चाहते हैं, नए नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और साथ ही देश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन समस्या तो ये है जागृति जी कि सपनों के साथ साथ दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि सपने पीछे छूट जाते हैं और केवल संघर्ष ही दिखाई देता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारे युवा साथियों को अपने सपनों को पहचानना चाहिए, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा साथियों, छोटी छोटी सफलताओं का भी सम्मान करना होगा, असफलता को सीख के रूप में देखना होगा, समय का सही प्रबंधन करना होगा, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, साथ ही परिवार और मित्रों से खुलकर बात भी करनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करना शुरू करना होगा और अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपने करियर को चुनना होगा।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि युवाओं के सपने कम हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: वास्तव में आज के युवाओं के सपने पहले से ज्यादा है कशिश। वे नई खोज करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और वैश्विक स्तर पर पहचान भी बनाना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: समस्या सपनों की कमी नहीं है श्रोताओं, बल्कि बढ़ते दबाव की अधिकता है। सपने आज भी मौजूद हैं, लेकिन कई बार दबाव का शोर इतना बढ़ जाता है कशिश की सपनों की आवाज भी सुनाई नहीं देती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अपने सपनों को जिंदा रखिए और उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए।
1: जी हाँ,
0: और सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करिए। हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आपको ये समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल दूसरों से आगे निकलना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाना भी है। जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं, समय प्रबंधन करना, सकारात्मक सोच विकसित करना, नियमित व्यायाम करना, अच्छे मित्रों का साथ और परिवार से संवाद, ये सब तनाव को कम करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही कशिश, असफलता को जीवन का हमें हिस्सा नहीं मानना है, बल्कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो ऐसे में श्रोता साथियों, आप हमेशा याद रखें कि सपने तभी पूरे होते हैं जब उन पर विश्वास हमारा बना रहता है।
0: बिल्कुल,
1: दबाव जीवन का हिस्सा है साथियों, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। दूसरों की अपेक्षाओं से पहले अपनी पहचान आप बनाइए, धीरे चलिए लेकिन अपने रास्ते पर चलिए।
0: बिल्कुल,
1: हर सफलता समय मांगती है और हर असफलता एक नई सीख देती है।
0: जी हाँ,
1: अपने सपनों को किसी की तुलना, डर या दबाव के कारण मरने मत दीजिए, क्योंकि हम युवा साथी हैं, हम सपने भी देखते हैं और दबाव भी महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, चुनौती ये नहीं है कि दबाव है, बल्कि ये है कि कहीं वह दबाव हमारे सपनों पर भारी न पड़ जाए।
0: जी हाँ,
1: जरूरत इस बात की है कि परिवार, समाज, शिक्षा व्यवस्था और स्वयं हम युवा मिलकर ऐसा वातावरण बनाए साथियों, जहाँ सपनों को उड़ान मिले, न कि वे अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाए।
0: बिल्कुल कशिश, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि आज का युवा सपने भी देखता है और दबाव भी महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दबाव की संख्या पहले से कहीं अधिक हो गई है। प्रतिस्पर्धा, अपेक्षा, सोशल मीडिया, आर्थिक चुनौतियां और भविष्य की अनिश्चितता हमारे युवाओं के सामने खड़ी हो चुकी है। लेकिन
1: हाँ,
0: इतिहास गवाह है श्रोता साथियों कि हर पीढ़ी ने चुनौतियों का सामना किया है और आगे बढ़ी है। आज के युवाओं को वही क्षमताओं को अपनाना होगा। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें और दबाव को अपनी पहचान न बनने दें।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोताओं, दबाव अस्थायी है लेकिन सपने जीवन को दिशा देते हैं। यदि सपने जीवित है तो उम्मीद भी जीवित है, और जहां उम्मीद जीवित है वहां सफलता का रास्ता भी अवश्य निकलता है।
1: बिल्कुल,
0: तो दबाव चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, सपनों की रोशनी को कभी पूछने मत दीजिए, क्योंकि वही सपने कल की सफलता, समाज की प्रगति और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव बनता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो भी बातें करी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है। सुनना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अंजलि, अक्सर हम कहते हैं कि समाज बदलना है, लोगों को जागरूक करना है, अपनी बात सब तक पहुंचानी है, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी हमने ये सोचा है कि बदलाव केवल बोलने से नहीं बल्कि सुनने से भी आता है। जब हम किसी की बात पूरे मन से सुनते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसके अनुभवों का सम्मान करते हैं, तभी एक संवेदनशील समाज का निर्माण होता है।
0: जी हाँ,
1: आज के सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे गुण की जो देखने में छोटा लगता है लेकिन समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत रखता है।
0: बिल्कुल,
1: विषय है श्रोता साथियों, सुनना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत रहने वाली है, सुनना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: तो अंजलि, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है। हर दिन हम अनेक विचार, संदेश, समाचार और राय सुनते हैं और साझा भी करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सोशल मीडिया, मोबाइल और डिजिटल माध्यमों ने हर किसी को बोलने का अवसर भी दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हम उतनी ही गंभीरता से सुन भी रहे हैं?
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सुनना केवल कानों से शब्द ग्रहण करना नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि सामने वाले की भावनाओं, अनुभवों और आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास है। जब समाज में लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, तब संवाद कमजोर पड़ने लगता है, विश्वास कम होने लगता है और समस्याएं बढ़ने लगती है। इसलिए श्रोता साथियों, सुनना केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
0: जी हाँ।
1: सच्चा स्वराज केवल अपनी बात रखने का अधिकार नहीं देता है जागृति जी, बल्कि दूसरों की बात को सम्मान पूर्वक सुनने का संस्कार भी सिखाता है।
0: जी हाँ।
1: जब समाज में हर व्यक्ति की आवाज को महत्व मिलता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और विकास की दिशा सही तय होती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम अक्सर किसी की बात सुनते हुए भी वास्तव में नहीं सुनते। हमारा मन पहले से ही उत्तर देने या अपनी बात कहने में इतना व्यस्त रहता है। वास्तविक सुनना तब होता है श्रोता साथियों, जब हम बिना पूर्वाग्रह के सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करें।
1: जी जी।
0: जैसे कि एक किसान जब अपनी खेती की समस्या बताता है, एक महिला जब अपनी कठिनाइयों को साझा करती है, एक युवा जब अपने सपनों और चुनौतियों की बात करता है श्रोताओं, या कोई बुजुर्ग को अपने अनुभव सुनाता है, तब केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन के अनुभव हमारे सामने होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम उन्हें ध्यान से सुने अंजलि, तो समाज को बेहतर बनाने के बहुत सारे रास्ते हमें दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों का एक चलता फिरता विद्यालय है।
0: बिल्कुल।
1: किसी ने संघर्ष किया है तो किसी ने सफलता पाई है, किसी ने कठिन परिस्थितियों से लड़कर जीवन को आगे बढ़ाया है। यदि हम इन अनुभवों को सुनेंगे श्रोता साथियों, तो बिना ठोकर खाए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: यही कारण है कि कहा जाता है कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, और अनुभव तक पहुंचने का सबसे सरल माध्यम है ध्यान पूर्वक सुनना।
0: बिल्कुल अंजलि, कई बार हम देखते हैं कि समस्या अचानक पैदा नहीं होती, और वो धीरे धीरे लोगों की शिकायतें, सुझाव और चिंताओं के रूप में सामने आती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर समाज, पंचायत, प्रशासन या परिवार समय रहते इन आवाजों को सुन ले, तो बड़ी समस्याओं को रोका जा सकता है। गांव में पानी की कमी हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो या रोजगार का प्रश्न हो, इन सब का समाधान तभी संभव है जब पहले लोगों की वास्तविक जरूरतों को सुना जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि विश्वास किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तब उसके मन में अपनापन और भरोसा बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार में माता पिता यदि बच्चों की बातें सुने, बच्चे बुजुर्गों के अनुभव सीखें, शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या सुने और समाज अपने नागरिकों की आवाज सुने, तो संबंध अधिक मजबूत बनते हैं। जहाँ सुनने की संस्कृति होती है श्रोता साथियों, वहाँ विवाद कम और सहयोग अधिक होता है। क्योंकि जागृति जी, लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता की भागीदारी।
0: बिल्कुल।
1: ग्राम सभा, पंचायत, जन सुनवाई और सामुदायिक बैठकें इसलिए होती हैं ताकि हर व्यक्ति अपनी बात रख सके और उसे सुना जाए। यदि केवल कुछ लोगों की आवाज सुनी जाती है और बाकी लोग अनसुने रह जाते हैं जागृति जी, तो स्वराज जो है वो अधूरा रह जाता है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज वही है जहाँ निर्णय लोगों की आवश्यकताओं और सुझावों को सुनकर लिया जाए।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि समाज के विकास में हम बार बार हमारे श्रोता साथियों को हर कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि महिलाओं और युवाओं और बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार इनके विचार को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, जबकि यही वर्ग नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आते हैं।
1: जी हाँ।
0: अगर युवाओं को सुना जाए तो रोजगार, शिक्षा और नवाचार के नए रास्ते खुलते हैं। अगर महिलाओं की बात सुनी जाए तो परिवार और समाज दोनों अधिक संवेदनशील बनते हैं, और अगर बच्चों की जिज्ञासाओं को सुना जाए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से सुनना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ये बातें आगे और भी निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि सुनना केवल कानों का नहीं मन का भी कार्य है, इसी के साथ हम जान पाए कि हर आवाज एक अनुभव है, समाज की समस्याएं पहले सुनाई देती है। इसी के साथ हमने जाना कि सुनने से बनता है विश्वास,
1: बिल्कुल,
0: लोकतंत्र और स्वराज की आत्मा के बारे में जाना, और उसी के साथ जागृति जी हम जान पाए कि महिलाओं, युवाओं और बच्चों की आवाज को भी सुना जाना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: अब यही बात आती है कि सुनना विवाद नहीं समाधान पैदा करता है।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, अधिकांश विवाद इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने के बजाय केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक सामने वाले की पूरी बात सुन ले तो कई गलतफहमियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं।
1: जी हाँ।
0: सुनना किसी भी समस्या के समाधान की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ सामुदायिक रेडियो और सुनने की संस्कृति को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बातें बताएं तो सामुदायिक रेडियो केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है श्रोताओं, बल्कि समाज की आवाज को सुनने और उसे आगे तक पहुँचाने का सशक्त मंच है। जब किसान अपने अनुभव साझा करते हैं, जब महिलाएं अपनी सफलताएं बताती है, युवा अपने विचार रखते हैं और श्रोता अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तब रेडियो वास्तव में समुदाय और समाज के बीच संवाद का पुल बन जाता है, और यही संवाद समाज को जागरूक, सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज तकनीक ने संवाद को और भी आसान बनाया है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन धैर्य पूर्वक सुनने की आदत कम होती जा रही है। हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, हमें ये याद रखना होगा कि अच्छी बातचीत की शुरुआत बोलने से नहीं बल्कि सुनने से होती है। जब हम पूरी बात समझ लेते हैं तभी हमारा उत्तर भी सार्थक होता है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, कई बार किसी दुखी, अकेले या परेशान व्यक्ति को सलाह की नहीं बल्कि एक ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो उसकी बात को ध्यान से सुन सके। किसी की पीड़ा को सुनना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना और उसे ये एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है, यह भी समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण रूप होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमें एक संवेदनशील, जागरूक और मजबूत समाज बनाना है श्रोताओं, तो हमें बोलने के साथ साथ सुनने की संस्कृति भी विकसित करनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: सुनना सम्मान है, विश्वास है, सहभागिता है और सामाजिक उत्तरदायित्व है। जब परिवार एक दूसरे को सुनेगा, जब समाज हर वर्ग की आवाज को महत्व देगा, जब ग्राम सभा में हर नागरिक की बात सुनी जाएगी, जब युवा, महिलाएं, किसान और बुजुर्ग अपनी बात निडर होकर रख सकेंगे और उन्हें ध्यान से सुना जाएगा, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज मजबूत हो पाएगा। हम यही कह सकते हैं श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किसी भी समाज की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वहाँ कितने लोग बोलते हैं, बल्कि इस बात से होती है अंजलि कि वहाँ कितने लोग एक दूसरे को सम्मान पूर्वक सुनते हैं। सुनना केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि विश्वास, संवेदना, अपनापन और जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम केवल उसकी समस्या नहीं समझते बल्कि उसके जीवन, उसके संघर्ष और उसकी उम्मीदों को भी समझने लगते हैं, और यही समझ समाज को जोड़ती है और यही जुड़ाव सच्चे स्वराज की नींव बनता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सुनना केवल एक आदत नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है।
1: बिल्कुल,
0: जिस समाज में लोग एक दूसरे को सुनते हैं वहाँ विश्वास, सहयोग और विकास अपने आप पड़ता है। सच्चा स्वराज केवल अपनी बात कहने में नहीं श्रोता साथियों, बल्कि दूसरों की बात को सम्मान पूर्वक सुनने में भी कहलाता है।
1: बिल्कुल, सच्चा स्वराज केवल अधिकारों की बात नहीं करता अंजलि, बल्कि कर्तव्यों को याद दिलाता है, और अगर बोलना हमारा अधिकार है तो सुनना हमारा कर्तव्य भी है श्रोताओं। जब समाज में सुनने की संस्कृति विकसित होगी तब संवाद मजबूत होगा।
0: बिल्कुल,
1: विश्वास बढ़ेगा, मतभेद कम होंगे, समस्याओं के समाधान सरल होंगे और विकास की दिशा और अधिक समावेशी बनेगी।
0: जी हाँ।
1: यही वो संस्कृति है जो लोकतंत्र को जीवंत बनाती है और समाज को आत्मनिर्भर तथा संवेदनशील बनाती है। तो श्रोताओं, सामुदायिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ हर आवाज का महत्व है। जब गांव की चौपाल, ग्राम सभा, मोहल्ले की बैठक, विद्यालय, परिवार और सामुदायिक रेडियो, ये सारे मंच लोगों की बात सुनने का माध्यम बनते हैं अंजलि।
0: बिल्कुल,
1: तब केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि विश्वास, सहयोग और साझेदारी का निर्माण होता है, और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है और यहीं से स्वराज का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में उतरता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, एक जागरूक समाज वही होता है जहां हर आवाज को महत्व मिले, हर व्यक्ति ये महसूस करे कि उसकी बात अनसुनी नहीं होगी। इसलिए श्रोता साथियों, हम केवल बोलने वाले नहीं बल्कि समझदारी से सुनने वाले नागरिक बनने का भी संकल्प लें, क्योंकि जब समाज एक दूसरे को सुनना सीख जाता है तब संवाद मजबूत होता है, रिश्ते गहरे होते हैं और विकास की राह अधिक समावेशी, संवेदनशील और सकारात्मक बनती है। सुनने की यह छोटी सी आदत श्रोता साथियों, यकीन मानिए, एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की मजबूत शुरुआत बन सकती है।
1: बिल्कुल, और कहना चाहेंगे श्रोता साथियों आपको कि बोले गए शब्द कुछ समय तक हमें याद रहते हैं, लेकिन मन से सुनी गई बातें जीवन भर रिश्तों में विश्वास बनकर रहती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आइए सुनने की इस सुंदर संस्कृति को अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज और अपने देश की पहचान बनाएं। यही सामाजिक जिम्मेदारी है और यही मानवीय संवेदना है और यही सच्चे स्वराज की सबसे मजबूत आधारशिला है।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों इसी विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे विदा लूंगी और हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विचार, नए विषय और नई प्रेरणा के साथ में। तब तक सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जब हम एक दूसरे को दिल से सुनते हैं तभी समाज दिलों से जुड़ता है और जब समाज जुड़ता है तभी सच्चे अर्थों में स्वराज साकार होता है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी बातें ढेर सारी हो गई हैं, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सुबह जल्दी उठने की परंपरा और उसके स्वास्थ्य लाभ को लेकर।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों की दिनचर्या का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही हैं।
0: जी हाँ,
1: वागर क्षेत्र के गांव में पहले सूर्योदय से पहले उठना केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन का नियम था। खेतों की ओर जाने वाले किसान, जंगल से चारा या लकड़ी लाने वाली महिलाएं, पशुओं की देखभाल करने वाले परिवार और स्कूल जाने वाले बच्चे सभी अपने दिन की शुरुआत सुबह की ताजी हवा और उगते सूरज के साथ करते थे।
0: जी बिल्कुल,
1: दिनचर्या केवल काम के लिए नहीं थी बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का भी एक स्वाभाविक तरीका थी। आज मोबाइल, देर रात तक जागने की आदत और बदलती जीवन शैली के कारण बहुत से लोग देर तक सोते रहते हैं और देर से उठते हैं। इसका असर मनीषा धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, काम करने की क्षमता और मानसिक संतुलन पर भी दिखाई देने लगा है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सुबह जल्दी उठने की परंपरा और स्वास्थ्य लाभ को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि पुराने समय में लोगों के पास आधुनिक सुविधाएं कम थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य अक्सर अंजलि जी बेहतर रहता था।
1: बिल्कुल,
0: इसका एक बड़ा कारण यह भी है श्रोता साथियों कि वे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीते थे। हम देखते हैं अंजलि जी कि वे सुबह जल्दी उठते थे, ताजी हवा लेते थे और कुछ समय स्वयं के साथ बिताते थे। साथ ही श्रोता साथियों, हल्का व्यायाम या खेतों में पैदल जाना, समय पर भोजन करना और रात को जल्दी सोना, यही सभी श्रोता साथियों उनकी स्वास्थ्य जीवन शैली का आधार थी।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि विज्ञान भी मानता है कि शरीर की अपनी जैविक घड़ी होती है। जब हमारी दिनचर्या सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास रहती है तो शरीर में कई कार्य बेहतर ढंग से चलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, यही बात करें सुबह की ताजी हवा के महत्व की, तो श्रोता साथियों, सुबह का वातावरण अपेक्षाकृत शांत और स्वच्छ होता है। इस समय टहलने, गहरी सांस लेने या हल्की शारीरिक गतिविधि करने से शरीर को ताजगी महसूस होती है।
0: जी हाँ,
1: यदि गांव में पेड़ पौधों के बीच या खेतों की ओर पैदल चला जाए तो मन भी शांत होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह जल्दी उठने वाले लोग अक्सर दिन भर अधिक व्यवस्थित महसूस करते हैं, उन्हें अपने काम की योजना बनाने का समय मिलता है और जल्दबाजी कम होती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सुबह का शांत वातावरण मन को स्थिर करने, ध्यान लगाने, प्रार्थना करने और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने का अवसर देता है।
0: जी हाँ,
1: इससे तनाव कम करने में भी मदद मिलती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि बच्चों के लिए यह आदत क्यों जरूरी है इसकी, तो हम देखते हैं कि यदि बच्चे समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठे तो वे स्कूल के लिए बिना जल्दबाजी के तैयार हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें नाश्ता करने का समय मिलता है और पढ़ाई पर ध्यान लगाने में भी आसानी होती है। हम देखते हैं कि मोबाइल या टीवी देखने के कारण देर रात तक जागना बच्चों की नींद और दिनचर्या दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए परिवार को मिलकर अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, यही बात आती है कि गांव में महिलाएं पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाती है। यदि उनकी दिनचर्या संतुलित हो और वे सुबह थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकाले श्रोता साथियों, तो वे दिन भर अधिक सक्रिय महसूस कर सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: सुबह कुछ मिनट पैदल चलना, हल्का योग, गहरी सांस लेना या शांत वातावरण में बैठना उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे यहाँ के क्षेत्र में खेती और मेहनत वाला जो काम है वो बहुत अधिक होता है। गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी काम शुरू करना शरीर पर पड़ने वाले अधिक ताप के प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। सुबह के समय में खेतों में काम करना अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक होता है और दिन की ऊर्जा भी बनी रहती है।
0: जी हाँ,
1: हमारे गाँव के कई बुजुर्ग मनीषा आज भी सूर्योदय से पहले उठते हैं। वे कहते हैं कि नियमित दिनचर्या, समय पर भोजन और सुबह की शुरुआत प्रकृति के साथ करने से जीवन अधिक संतुलित लगता है।
0: जी हाँ,
1: उनके अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि अच्छी आदतें किसी दवा से कम नहीं होती।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं और आगे भी हम ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि सुबह जल्दी उठने की जो हमारी परंपरा है उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या लाभ है।
1: छोटा
0: साथियों, सुबह जल्दी उठने की आदत को हमें विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी आदत जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन छोटे छोटे कदम हमारी मदद अवश्य कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो रात को समय पर सोने का हमें प्रयास करना है, सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करना है, सुबह का अलार्म एक निश्चित समय पर रखना है।
1: जी हाँ।
0: उठते ही कुछ मिनट ताजी हवा में जाएं, हल्का व्यायाम, प्रार्थना का ध्यान रखें, पौष्टिक नाश्ते के साथ ही दिन की शुरुआत हमें करने की जरूरत है। श्रोता साथियों, सुबह उठना तभी लाभकारी होगा मनीषा, जब पूरी नींद भी ली जाए और केवल कम सोकर जल्दी उठने वाली जो चीजें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है। वयस्कों को सामान्यतः पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है और बच्चों और किशोरों को उससे भी अधिक। इसलिए लक्ष्य केवल जल्दी उठना नहीं बल्कि समय पर सोना और पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वागड़ की संस्कृति हमें प्रकृति के साथ चलना सिखाती है। यहाँ सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज, मंदिरों की घंटी, पशुओं की देखभाल और खेतों की ओर बढ़ते कदमों से होती रही है। यह केवल एक परंपरा नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि संतुलित जीवन जीने का एक तरीका है। यदि हम आधुनिक जीवन में भी इस परंपरा के अच्छे पहलुओं को अपनाएं, तो अपने स्वास्थ्य और परिवार दोनों के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से कि बदलते समय के साथ हमारी जीवन शैली बदलना स्वाभाविक है, लेकिन हर बदलाव लाभदायक हो यह जरूरी नहीं। कुछ पुरानी परंपराएं ऐसी हैं जिनकी उपयोगिता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जो हमें समय का सम्मान करना, प्रकृति के करीब रहना और अपने शरीर व मन की देखभाल करना सिखाती है।
1: जी हाँ।
0: स्वस्थ जीवन किसी एक दवा, एक भोजन या एक व्यायाम से नहीं बनता, यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है। यदि परिवार के सभी सदस्य समय पर सोने और सुबह समय पर उठने की संस्कृति अपनाएं, तो घर का वातावरण अधिक अनुशासित, सकारात्मक और ऊर्जावान बन सकता है। आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हर दिन की शुरुआत जल्दबाजी से नहीं बल्कि शांति, अनुशासन और नई ऊर्जा के साथ करेंगे। यही स्वस्थ शरीर, शांत मन और खुशहाल परिवार की मजबूत नींव है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन, पद या सुविधा नहीं है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य और संतुलित दिनचर्या है। जब हमारी सुबह सकारात्मक सोच, ताजी हवा, समय की पाबंदी और आत्म अनुशासन के साथ शुरू होती है, तो उसका प्रभाव हमारे पूरे दिन और व्यवहार और कार्य क्षमता और साथ ही मानसिक स्थिति पर दिखाई देता है। यही कारण है श्रोता साथियों कि हमारे पूर्वज दिन की पहली किरण को नई शुरुआत का प्रतीक मानते थे और सुबह के समय को मूल्यवान समय समझते थे।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं अंजलि जी कि तकनीकी ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही देर रात तक जागने, अनियमित भोजन, भागदौड़ भरी दिनचर्या जैसे चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में हम अपनी पुरानी अच्छी परंपराओं को आधुनिक समझ के साथ फिर से अपनाए श्रोता साथियों, तो यह हमारे परिवार और समाज दोनों के लिए लाभकारी होगी। सुबह जल्दी उठने का अर्थ केवल जल्दी जागना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को पर्याप्त आराम देना, समय का सही उपयोग करना और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना है।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि वागड़ की संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने वाला जीवन अधिक संतुलित और सुखद होता है।
1: जी हाँ।
0: सूरज का स्वागत करना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, स्वच्छ वातावरण में कुछ समय बिताना और अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करना, ये छोटी छोटी बातें जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है।
1: जी हाँ।
0: यह आदत श्रोता साथियों केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार में अनुशासन, बच्चों में अच्छी आदतें और समाज में सकारात्मक वातावरण भी विकसित करती है।
1: बिल्कुल।
0: हम अपने घरों में ऐसी दिनचर्या बनाने का प्रयास करें जहां रात को समय पर विश्राम हो और सुबह नई ऊर्जा, नई आशा और नए उत्साह के साथ जीवन का स्वागत किया जाए। जब हर घर स्वस्थ आदतों को अपनाएगा तब पूरा गांव स्वस्थ होगा। जब गांव स्वस्थ होगा तभी हमारा वागड़ और हमारा जो देश है वो वास्तव में समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बन सकेगा। इसलिए श्रोता साथियों, सुबह उठने की जो ये परंपरा है वो हमारे स्वास्थ्य को कई सारे लाभ पहुंचाती है। तो हमें फिर से इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाना होगा और हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी इस परंपरा के बारे में बताना है। तो आशा करते हैं कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी
0: विदा हाँ। जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। एक ऐसा मंच साथियों जहां हम सपनों को हकीकत में बदलने की बात करते हैं। लेकर हाजिर हो चुकी हूं एक नए विषय के साथ में आज के इस कार्यक्रम को। साथियों, आज का हमारा विषय है छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। साथियों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये सच भी है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे बड़े भविष्य की नींव बनती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। जानेंगे दोस्तों कि छोटी आदतें क्या होती है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव कर सकती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, और मनोरंजन के बिना तो ये कार्यक्रम भी अधूरा है। साथियों, तो आइए सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको विषय बता दिया है कि आज हम बात कर रहे हैं छोटी आदतें बड़ा बदलाव लेकर आती है, इस विषय को लेकर। दोस्तों अक्सर हम ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा मौका, बड़ा फैसला या बड़ा जोखिम। लेकिन साथियों सच तो ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से ही आते हैं। छोटी आदतें क्या है, जैसे कि रोज 10 मिनट पढ़ना, समय पर उठना, अपने लक्ष्य लिखना, किसी की मदद करना और रोज खुद से एक सकारात्मक बात कहना। श्रोता साथियों, दोस्तों ये सब चीजें छोटी लग सकती हैं, पर जब ये आदतें बन जाती हैं तो यही आपकी पहचान भी बन जाती है। हम देखते हैं दोस्तों कि यही होती है छोटी आदतें। बात करें अगर आदतों की ताकत की तो श्रोता साथियों, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम रोज कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों किसी ने सही कहा है कि हम रोज जो करते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर आप दोस्तों रोज थोड़ी मेहनत किसी चीज को लेकर करते हैं तो एक दिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक छात्र है जो रोज 20 मिनट पढ़ता है साथियों, और दूसरा छात्र सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ता है, तो आपके हिसाब से आगे कौन जाएगा? स्पष्ट है श्रोता साथियों कि वो छात्र जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि छोटी आदतें बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, क्योंकि एक छात्र ऐसा है जो रोज रोज नहीं पढ़ता, लेकिन एक छात्र ऐसा है जो रोज रोज पढ़ता है। तो ऐसे में वर्तमान में हमारी समस्या यही है दोस्तों कि हम जब किसी काम को कर रहे होते हैं तो पहली बार में हम उस काम को एकाग्रता के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी आदत में नहीं है। लेकिन वही दोस्तों अगर हम उसे एकाग्रता के साथ करेंगे, एक बार हमने किया, दूसरी बार हमने किया, तीसरे बार में वो हमारी आदत बन जाएगी। क्योंकि हम जो काम रोज रोज करते हैं ना श्रोता साथियों, तो एक न एक दिन वो हमारी आदत बन जाती है, और यही छोटी आदतें आगे जाकर बड़े बदलाव लाती हैं श्रोता साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी चीजें जो होती हैं वो हमें डराती हैं, लेकिन जो छोटी आदतें और जो छोटी चीजें होती हैं वो हमें सहज बनाती है श्रोता साथियों। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना है, तो दिमाग हमारा डर जाएगा, यानी कि पढ़ने से पहले ही हमारे अंदर चिंता और भय घर कर जाएगा, और हम ये सोचने लगेंगे कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा कैसे, क्योंकि मैंने उसे कह तो दिया कि मैं 5 घंटे पढ़ लूंगा। लेकिन जब वो चीज आपकी आदत में ही नहीं है तो उस काम को आप करेंगे कैसे श्रोता साथियों? लेकिन अगर आप खुद से ये कहें कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, तो आपका दिमाग मान जाएगा श्रोता साथियों, और फिर श्रोता साथियों यही 15 मिनट रोज रोज के 1 घंटा बन जाएंगे। कह सकते हैं कि रोज जब हम धीरे धीरे 15 मिनट पढ़ेंगे श्रोता साथियों, तो कह सकते हैं कि वो 15-15 कब 30 हो जाएंगे, और कब वो 30-30-60 हो जाएंगे श्रोता साथियों, हमें पता ही नहीं चलेगा, और फिर वो हमारी आदत में रह जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे और हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, और छोटी आदतें किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव लेकर आती हैं, उस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं साथियों। तो आगे भी ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, क्योंकि दोस्तों असली उड़ान तो अभी बाकी है। तो आगे और भी बातें होंगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, छोटी आदतें बड़े बदलाव किस प्रकार से लाती है, इस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और गीत से पहले दो उदाहरणों के माध्यम से हम समझ पाए थे श्रोता साथियों कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे हमारे प्रयास है वो जब हमारी जीवन शैली में हमारी आदत का रूप ले लेते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा संवर जाता है। जैसा कि हमने एक छात्र का उदाहरण भी लिया था। अब यही अगर बात करें श्रोता साथियों कि जीवन को बदलने के लिए क्या ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनानी है। जैसे कि दोस्तों, सुबह जल्दी उठने की आदत। दोस्तों, सुबह का समय जो होता है वो काफी शांत और सकारात्मक होता है। ऐसे में अगर आप किसी काम को करते हैं सुबह के समय में तो वो काम कह सकते हैं कि सफल भी होता है। इसलिए हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं श्रोता साथियों। इसी के बाद जो दूसरी आदत है वो हम अपना सकते हैं कुछ नया सीखने की। यानी कि दोस्तों, आपको रोज कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वो एक शब्द हो सकता है, एक विचार हो सकता है या फिर एक कौशल हो सकता है। दोस्तों, इसी के आगे बात करूं लक्ष्य की, तो लक्ष्य को तो श्रोता साथियों हम सभी ही पाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको अपने जो गोल्स हैं उन्हें लिख कर रखना है। दोस्तों, लिखने से क्या होगा कि वो जल्दी पूरे होंगे, क्योंकि हम उस चीज को बार बार देखेंगे, हमें याद रहेगा कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। तो कह सकते हैं कि हम उसके लिए मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद श्रोता साथियों एक न एक दिन हम सफल जरूर होंगे और हम अपनी मंजिल को पार कर ही लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, रोज आपको तीन चीजें लिखनी चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें श्रोता साथियों बनाया है और हमारे अंदर जो भी गुण है वो ईश्वर से ही हमें प्राप्त किए गए हैं। तो हमें सबसे पहले तो दोस्तों ईश्वर का आभारी होना चाहिए। इसी के साथ आप खुद से ये कहें कि आप हर चीज में परफेक्ट हैं और आप हर काम को करने के लिए सक्षम हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कुछ ऐसी सकारात्मक आदतें होती हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। और जब पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं दोस्तों, तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाऊं, तो एक लड़का था जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने फैसला किया कि वो रोज सिद्ध किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कुछ छोटी मोटी आदतें होती हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं, उन्हें अपने जीवन में हमें जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, आदतें बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। श्रुति एक और गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी और आप भी अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल होंगे। श्रोता साथियों, तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे एक नए विषय के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि हमारा परिवार सशक्त ही नहीं एकजुट और संवेदनशील भी हो। हम देखते हैं कि अक्सर जब हम एक मजबूत परिवार की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आर्थिक स्थिति आती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें लगता है कि जिसके पास अच्छा घर, अच्छी आय और सभी सुविधाएं हैं, वही सशक्त परिवार है।
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: क्या कशिश केवल धन ही परिवार को मजबूत बना सकता है? क्या बड़ा मकान, महंगे सामान और अच्छी कमाई रिश्तों में अपनापन ला सकती है? सच तो यह है कि यदि परिवार में विश्वास, सम्मान, सहयोग और संवेदनशीलता नहीं है तो आर्थिक संपन्नता भी अधूरी रह जाती है।
0: बिल्कुल,
1: वही हम देखते हैं कि सीमित साधनों वाला परिवार भी यदि प्रेम, समझ और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाता है तो वह हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है।
0: जी हाँ।
1: आज के समय में श्रोता साथियों, परिवार कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं। व्यस्त जीवन शैली, मोबाइल, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी, आपसी संवाद की कमी, बढ़ता तनाव परिवार की एकता प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना पर्याप्त नहीं है बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि एक सशक्त परिवार कैसा होता है, एकजुटता और संवेदनशीलता क्यों आवश्यक है, परिवार में बढ़ती दूरी के क्या कारण है और हम छोटे छोटे प्रयासों से अपने परिवार को कैसे खुशहाल, मजबूत और संवेदनशील बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से ढेर सारी करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले इस गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि दोस्तों बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण आज हमारे बीच जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि हमारा परिवार सशक्त ही नहीं एकजुट और संवेदनशील भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि परिवार केवल कुछ लोगों का साथ रहना भर नहीं होता है, बल्कि ये हमारे प्रेम, त्याग, सहयोग और संस्कारों का वह पवित्र संगम है जहाँ जीवन की पहली शिक्षा मिलती है बच्चों को, या फिर कह सकते हैं कि हमें पहली शिक्षा मिलती है। मनुष्य का व्यक्तित्व, उसके विचार, उसका आचरण और उसके संस्कार श्रोता साथियों परिवार की गोद में ही विकसित होते हैं।
1: जी जी,
0: इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र भी समृद्ध और शक्तिशाली बन ही जाएगा।
1: जी हाँ कशिश, हर व्यक्ति का पहला विद्यालय उसका परिवार ही होता है। यही से वह बोलना सीखता है, व्यवहार करना सीखता है, दूसरों का सम्मान करना सीखता है और जीवन के मूल्यों को भी समझता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि श्रोता साथियों परिवार में प्रेम, सहयोग और अनुशासन होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। लेकिन यदि परिवार में हर समय झगड़ा, अपमान और कटुता होगी तो उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए परिवार का वातावरण केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के समाज का भी निर्माण करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सशक्त परिवार का अर्थ केवल आर्थिक मजबूती नहीं है। एक सशक्त परिवार वह होता है जहाँ सभी सदस्यों का सम्मान हो, महिलाओं पुरुषों का सम्मान, महत्व मिले, बच्चों की बात सुनी जाए, बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि अनुभव का खजाना माना जाए, निर्माण मिलकर किए जाए, निर्णय जो है होते हैं वो मिलकर किए जाने चाहिए, कठिन समय में कोई अकेला न छूट जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ गलतियों पर अपमान नहीं बल्कि मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। यही परिवार की वास्तविक शक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि सशक्त परिवार ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है।
0: जी जी,
1: इसी के साथ एकजुट परिवार क्यों जरूरी है इसको लेकर बात करें तो श्रोता साथियों, जब परिवार एकजुट होते हैं ना तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। कोई अगर व्यक्ति बीमार हो, आर्थिक संकट हो, खेती में नुकसान हो, पढ़ाई की चिंता हो या जीवन का कोई भी कठिन समय हो, यदि परिवार साथ खड़ा हो जाए तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: एकता केवल साथ रहने के लिए नहीं आती है कशिश, बल्कि साथ निभाने के लिए आती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। और हम देखते हैं कि आज के समय में लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, आधुनिक सुविधाएं, अधिक आय, श्रोता साथियों सभी परिवार की सफलता का आधार माने जाते हैं। लेकिन केवल आर्थिक मजबूती ही परिवार को खुशहाल रख सकती है क्या साथियों? हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता नहीं होगी तो सारी सुविधाएं भी खुशी नहीं दे पाएंगी।
1: जी जी,
0: इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है अंजलि जी कि हमारा परिवार केवल सशक्त ही नहीं बल्कि एकजुट और संवेदनशील भी हो। एक ऐसा परिवार जहां हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझे, कठिन समय में साथ खड़े रहे, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को सम्मान करे तथा सुख दुख को मिलकर बांटे, वही वास्तव में श्रोता साथियों आदर्श परिवार कहलाता है।
1: जी हाँ कशिश, संवेदनशील परिवार वह होता है जहाँ लोग केवल अपनी नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। जब कोई सदस्य उदास हो तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई गलती करे तो उसे अपमानित करने के बजाय समझाना चाहिए। जब कोई बुजुर्ग अकेलापन महसूस करे तो उसके साथ समय बिताना चाहिए। जब बच्चे डर या परेशानी में हो तो उन्हें डांटने की जगह भरोसा दिया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: साथियों यही संवेदनशीलता परिवार को मजबूत बनाती है। आज कई कारणों से हम देखते हैं कि परिवारों की जो चीजें हैं वो कमजोर पड़ती जा रही हैं। संवाद की कमी, मोबाइल और टीवी पर ज्यादा समय, एक दूसरे को समय न देना, हर छोटी बात पर गुस्सा करना, तुलना करना, आर्थिक तनाव, अहंकार, एक दूसरे की भावनाओं की अनदेखी करना। श्रोता साथियों, जब लोग साथ रहते हुए भी बातचीत नहीं करते हैं तो दूरियां बढ़ना स्वाभाविक सी बात है।
0: जी हाँ,
1: हर दिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए श्रोता साथियों जब पूरा परिवार साथ में बैठे, मोबाइल एक तरफ रखें, सब अपने दिन भर की बातें साझा करें, अपने बच्चों से पूछें कि स्कूल कैसा रहा, बुजुर्गों की बातें सुनें, घर की योजनाएं मिलकर बनाएं। यही छोटी आदतें होती हैं जो परिवार को जोड़कर रखती हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि दोस्तों परिवार का अर्थ केवल माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के साथ रहना नहीं होता। परिवार तो वह स्थान है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के प्रेम मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ गलती होने पर समझाया जाता है, और जहाँ सफलता मिलने पर सबसे पहले खुशी मनाई जाती है
1: जी जी।
0: और असफलता आने पर सबसे पहले हिम्मत दी जाती है। श्रोता साथियों, परिवार व्यक्ति को सुरक्षा, आत्मविश्वास और जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं
1: जी हाँ।
0: जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रहते हैं अंजलि जी, तब परिवार असल मायने में कह सकते हैं कि मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल।
0: और सशक्त परिवार की अगर बात करें तो सशक्त परिवार श्रोता साथियों वह होता है जहाँ हम कह सकते हैं कि सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: शिक्षा को महत्व दिया जाता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है और भविष्य के लिए मिलकर कार्य किए जाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी इसी तरह बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम कशिश बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं
1: जी हाँ।
0: और गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से परिवार में संवाद की जो शक्ति है वो परिवार को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल
0: यही श्रोता साथियों, बच्चों के लिए परिवार की भूमिका की बात करें तो बच्चे केवल हमारी बातें नहीं बल्कि हमारा व्यवहार सीखते हैं।
1: जी जी अंजलि,
0: माता पिता एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो बच्चे भी सम्मान करना सीखेंगे। यदि परिवार में झूठ, गाली गलोच और हिंसा होगी तो उसका असर बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ेगा। बच्चों को प्रेम के साथ अनुशासन देना हमें सिखाना है, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ सुख और शांति का वातावरण बनता है।
1: बिल्कुल,
0: महिलाओं को केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित न रखें, निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मसम्मान का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ जब परिवार की हर महिला सम्मान के साथ जीती है तब पूरा परिवार आगे बढ़ता है। बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते बल्कि अनुभव में भी समृद्ध होते हैं।
1: जी जी।
0: उनकी सलाह परिवार को कई गलतियों से बचा सकती है। उन्हें अकेला महसूस न होने दें, उनके साथ बैठें, बातें करें, उन्हें परिवार के हर सुख दुख के साथ में उन्हें जोड़ने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: बुजुर्ग जो है वो सही तरीके से उनके जीवन के अनुभव अगर हमारे साथ साझा करेंगे तो हम हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। और जैसा कि गीत से पहले हम सशक्त परिवार के महत्व के बारे में भी जान पाए थे, जैसा कि साथियों हमने बात की थी कि सशक्त परिवार वह होता है जहां सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं,
0: बिल्कुल
1: शिक्षा को महत्व देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है, साथ ही भविष्य को लेकर मिलकर कार्य किया जाता है। अंजलि जी, ऐसे परिवार में बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों की देखभाल और सभी चीजों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार की मजबूती समाज और राष्ट्र की मजबूती का आधार होती है। और साथ ही अगर बात करें तो केवल आर्थिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती साथियों, बहुत परिवार आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि संपन्न होते हैं लेकिन उनमें प्रेम और आपसी समझ की कमी होती है। कई बार परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बातचीत कम हो जाती है, मोबाइल और इंटरनेट परिवार के बीच की दूरी को और बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि यदि परिवार में संवाद नहीं होगा, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं होगा और समय नहीं दिया जाएगा तो आर्थिक संपन्नता भी परिवार को खुश नहीं रख पाएंगी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सच्चे परिवार की पहचान खुशियों में नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। जब कोई सदस्य बीमार होता है, जब कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हो, जब किसी की नौकरी चली जाए, जब पढ़ाई में असफलता मिले, तब परिवार यदि साथ खड़ा रहे तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है।
1: जी हाँ।
0: मजबूत परिवार मिलकर मजबूत समाज बनाते हैं। यदि हर परिवार बच्चों को संस्कार देगा, महिलाओं का सम्मान करेगा, बुजुर्गों का आदर करेगा, पड़ोसियों की सहायता करेगा तो पूरा गांव खुशहाल बन जाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि
0: साथियों, परिवार को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास हमें करने हैं, जैसे कि प्रतिदिन साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने, गुस्से में निर्णय न ले, बच्चों के साथ समय बिताएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, घर के कार्यों में सहयोग करें। इसी के साथ कृषि त्योहार और पारिवारिक अवसर जो होते हैं उसको मिलकर मनाएं, धन्यवाद और क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करें, छोटी छोटी खुशियों को साथ मिलकर मनाएं। परिवार में विश्वास का वातावरण भी हमें बनाकर रखना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि एकजुट परिवार वह होता है जहां सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना साथ मिलकर करते हैं और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में बराबर भागीदारी बनते हैं।
0: जी जी
1: अंजलि जी हम कह सकते हैं कि जब परिवार एकजुट रहता है तो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ भी करता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही संवाद के महत्व को लेकर बात करें तो परिवार को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी संवाद होता है साथियों, यानी कि सभी सदस्य खुलकर एक दूसरे से बातचीत करें। ऐसे में यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी हो भी तो उसे समय रहते प्रेम पूर्वक व्यक्त करना हमें चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ बैठना, भोजन साथ करना, दिन भर की बातें साझा करना और एक दूसरे की समस्या सुनना परिवार को और भी अधिक मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल कशिश, मजबूत दीवारें घर को सुरक्षित रख सकती हैं, लेकिन मजबूत रिश्ते ही परिवार को सुरक्षित रखते हैं। धन जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन संवेदनशीलता जीवन को सुंदर बनाती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एकजुट परिवार केवल अपने सदस्यों को नहीं संभालता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देता है। परिवार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह स्थान है श्रोता साथियों, जहां हम बिना किसी शर्त के अपनापन, सुरक्षा और विश्वास पाते हैं। इसलिए परिवार को केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास पर्याप्त नहीं है, उतना ही आवश्यक है कि हम उसे भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बनाए। जब घर में सम्मान, संवाद, सहयोग और संवेदनशीलता का वातावरण होता है, तब परिवार का हर सदस्य अपने सपनों को पूरा करने का साहस पाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। तो श्रोता साथियों, हम अपने परिवार में शिकायतों से अधिक संवाद को महत्व दें, आलोचना से अधिक प्रोत्साहन दें, क्रोध से अधिक धैर्य रखेंगे और अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, बुजुर्गों के अनुभवों का सम्मान करेंगे, महिलाओं की गरिमा को परिवार की शक्ति मानेंगे और हर सदस्य की भावनाओं को महत्व देंगे।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा परिवार कशिश न केवल अपने लिए सुख और शांति का आधार बनेगा बल्कि गाँव, समाज और देश के लिए भी प्रेरणा बनेगा। जब परिवार एकजुट और संवेदनशील और सशक्त होता है, तभी एक मजबूत, मानवीय और समृद्ध समाज का निर्माण संभव होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातचीत बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, ये बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और पैरे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों बहुत अच्छी बातें परिवार के महत्व को लेकर और कह सकते हैं कि परिवार की महत्वता को लेकर हम बात कर ही रहे हैं, तो यहीं अगर बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका को हम जाने अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि परिवार में प्रेम सम्मान अनुशासन और सहयोग का वातावरण होगा तो बच्चे भी अच्छे संस्कार ही सीखेंगे साथियों।
1: जी जी,
0: उन्हें केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत, करुणा, पर्यावरण संरक्षण, बड़ों का सम्मान और समाज सेवा जैसी बातें भी परिवार से ही सीखनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि संस्कार जो है वो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ईमानदारी से काम करना और प्रकृति से प्रेम करना अच्छे संस्कारों की ही पहचान है।
1: जी हाँ,
0: यदि परिवार में अच्छे संस्कार दिए जाएं तो बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें तो श्रोता साथियों, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन पर या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि ऐसे परिवार से होती है जहाँ प्रेम और भाईचारा हो। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय के साथ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, बच्चों की उम्र बढ़ेगी, जिम्मेदारियाँ बदलेंगी, आर्थिक उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि परिवार के रिश्तों की डोर विश्वास, संवेदना और सहयोग से बंधी होगी तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होगी
0: बल्कि
1: उसे परिवार पार न कर सके। परिवार की वास्तविक शक्ति उसकी एकता में है, उसकी सुंदरता इस बात में है कि हर सदस्य को बिना किसी भेदभाव स्वीकार करता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें डिजिटल युग में परिवार के महत्व की, तो आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। कह सकते हैं कि लोगों को जोड़ने के साथ साथ परिवारों में भी दूरी भी बढ़ाई है। कई बार परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करने के बजाय मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, इसलिए परिवार में यह प्रयास होना चाहिए श्रोता साथियों कि प्रतिदिन कुछ समय बिना मोबाइल के साथ बैठकर बातचीत की जाए और रिश्तों को समय दिया जाए। हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि परिवार में संवाद नहीं होगा तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं होगा और समय नहीं दिया जाएगा तो आर्थिक संपन्नता भी जो है वो परिवार को सुख नहीं दे पाएगी। श्रोता साथियों, आज के हमारे समाज के प्रति भी हमारी कई जिम्मेदारियां बनती है, जैसे कि संवेदनशील परिवार केवल अपने बारे में ही नहीं सोचता बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदार होता है। गरीबों की सहायता करना, पर्यावरण की रक्षा करना, जल बचाना, स्वच्छता बनाए रखना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना परिवार की सामाजिक

0: संवेदनशीलता को दर्शाता है। साथियों, परिवार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना पर्याप्त नहीं होता। यदि परिवार में प्रेम, विश्वास, सम्मान, सहयोग और संवेदनशीलता होगी, तभी वह वास्तव में सशक्त कहलाएगा। एकजुट परिवार हम कह सकते हैं कि अपने प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा, आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहीं संवेदनशीलता जो है, वो परिवार, जो संवेदनशील परिवार होता है, वो दूसरों के दुख को समझता है और हर परिस्थिति में एक साथ निभाने का कह सकते हैं कि प्रयास करता है। आज के समय में जैसा कि हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक तकनीक, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर हमारे जीवन में बेहतर बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, अपनापन और संवेदनशीलता कम हो जाए अंजलि जी, तो सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाएंगी।
1: बिल्कुल कशिश, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने परिवार को केवल सुविधाओं से नहीं बल्कि अच्छे संस्कार, मधुर शब्दों और साझा जिम्मेदारियों से समृद्ध करें।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि करुणा, ईमानदारी और बड़ों के सम्मान का संस्कार भी थे। बुजुर्गों को केवल देखभाल नहीं बल्कि निर्णयों में भागीदारी दें। महिलाओं को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि बराबरी का सम्मान और अवसर दें।
0: जी जी,
1: पुरुष भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके और परिवार के हर कार्य में सहभागिता निभाएं। जब कशिश घर का हर सदस्य ये महसूस करेगा कि उसकी बात सुनी जाती है और उसका महत्व है, तभी परिवार वास्तव में मजबूत बन सकेगा।
0: जी हाँ,
1: याद रखिए श्रोता साथियों कि परिवार की खुशियाँ किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि सभी के छोटे छोटे सहयोग से बनती है।
0: बिल्कुल,
1: कभी एक मुस्कान, कभी एक धन्यवाद, कभी समय पर पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, वो किसी को बिना कहे कई सारी चीजों के लिए मदद कर देता है।
0: जी हाँ,
1: छोटे छोटे कदम रिश्तों में गहराई देते हैं। इन्हीं क्षणों से विश्वास जन्म लेता है और यही विश्वास परिवार को हर परिस्थिति में संभालने की ताकत देता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, हम ऐसा परिवार बनाने का संकल्प लें जहाँ भेदभाव हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं हो, जहाँ व्यस्तता हो सकती है लेकिन अपनों के लिए समय की कमी न हो, जहाँ अनुशासन हो पर कठोरता नहीं, जहाँ अधिकार हो पर कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हो, जहाँ हर सदस्य कशिश या गर्व से कह सके कि मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
0: जी हाँ,
1: यही परिवार आने वाली पीढ़ियों में प्रेम, संस्कार और संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की अमूल्य विरासत देगा। जब हमारे घरों में अपनापन, विश्वास की रोशनी जलेगी, तभी हमारा समाज अधिक मानवीय, अधिक सशक्त और अधिक खुशहाल बन सकेगा।
0: जी हाँ,
1: एक सच्चे, समृद्ध और संवेदनशील भारत की सबसे मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें कर ही रहे हैं और बातें हमारी बहुत ही अच्छी चल रही हैं।
1: जी हाँ,
0: आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से परिवार को सशक्त बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, किसी भी परिवार की पहचान इस बात से नहीं होती है कि उनके पास कितना धन, कितनी जमीन या कितनी सुविधाएं हैं, बल्कि इस बात से होती है कशिश कि उनके सदस्य एक दूसरे के जीवन में कितना विश्वास, सम्मान और सहारा बनते हैं।
1: बिल्कुल
0: जीवन की राह में सुख और दुख दोनों आते हैं। ऐसे समय में परिवार ही वह शक्ति बनता है जो टूटे हुए मन को संभालता है, निराश व्यक्ति को आशा देता है और संघर्ष कर रहे सदस्य को आगे बढ़ने का साहस देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवार को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति बिना डर अपनी बात कह सके,
1: बिल्कुल
0: अपनी भावनाएं साझा कर सके या महसूस कर सके कि वह अकेला है। श्रोता साथियों, आज बदलते समय में हम आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों की गर्माहट कम होती जा रही है। हम अपनों के साथ रहते हुए भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। यह दूरी केवल कशिश कमरों की नहीं बल्कि दिलों की दूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि
0: जी, को कोई तकनीक या सुविधा नहीं मिटा सकती। इसे केवल संवाद, धैर्य, अपनापन और एक दूसरे को समझने की इच्छा से ही कम किया जा सकता है।
1: जी जी।
0: यदि परिवार का हर सदस्य यह तय कर ले कि हम पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर बाद में अपनी बात रखेंगे, तो कई समस्या बिना विवाद के समाप्त हो सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। श्रोता साथियों, भारत की पहचान केवल उसकी विविधता से नहीं बल्कि उसकी पारिवारिक संस्कृति से भी है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, लोक परंपराएं और दैनिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। यदि अंजलि जी परिवार अपनी संस्कृति से जुड़ा रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों में भी कह सकते हैं कि अपनी जड़ें जो वे हैं वो नहीं भूल पाएंगी। हर सदस्य अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन परिवार तब मजबूत बनता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन भी करे।
0: बिल्कुल,
1: माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, बड़े बच्चे जो हैं वो बड़ों का सम्मान करें और सभी सदस्य घर की जिम्मेदारियों को साझा करें, तो ऐसे में अधिकार और कर्तव्य का संतुलन ही स्वस्थ परिवार की जीवन की नींव है।
0: जी हाँ कशिश, परिवार की सबसे बड़ी पूंजी उसकी अगली पीढ़ी होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। यदि वे सहयोग, सम्मान, समानता और सेवा का वातावरण देखेंगे तो वही संस्कार उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसी प्रकार जब बुजुर्गों के अनुभव को सम्मान मिलेगा, महिलाओं के विचारों को महत्व मिलेगा और युवाओं के सपनों को प्रोत्साहन मिलेगा, तब परिवार केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी मजबूत बनाकर रखेगा।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा परिवार समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनता है, क्योंकि अच्छे परिवार से ही अच्छे नागरिक और जिम्मेदार समाज का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए दोस्तों हम अपने परिवार को केवल सफल नहीं बल्कि संवेदनशील भी बनाएं, केवल सक्षम नहीं बल्कि सहृदय भी बनाएंगे, केवल अधिकारों का ही नहीं बल्कि कर्तव्यों का सम्मान करना भी सिखाएंगे। हम रिश्तों को समय देंगे, संवाद को आदत बनाएंगे, मतभेदों को समझदारी से सुलझाएंगे और हर सदस्य को यह एहसास दिलाएंगे कि वह इस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब घर का हर कोना विश्वास, सम्मान, करुणा और सहयोग से भर जाता है, तब वही घर एक ऐसे परिवार में बदल जाता है जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है।
1: बिल्कुल,
0: हर पीढ़ी को संस्कार देता है और पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है।
1: जी हाँ,
0: सच्चे अर्थों में एक सशक्त, एकजुट और संवेदनशील परिवार की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही सशक्त परिवार केवल अधिक आय से नहीं बनता साथियों, बल्कि समझदारी से किए गए खर्च और भविष्य की योजना से बनता है। बचत की आदत, अनावश्यक खर्चों से बचना, आपातकालीन निधि तैयार करना और परिवार के सदस्यों को आर्थिक जिम्मेदारी सिखाना परिवार को हर परिस्थिति में सुरक्षित बनाता है। अंजलि जी, एक संवेदनशील परिवार केवल अपने सदस्यों को ही नहीं बल्कि प्रकृति की भी चिंता करता है।
0: जी बिल्कुल,
1: जल संरक्षण, बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग, पौधारोपण और स्वच्छता जैसे जो छोटे छोटे प्रयास हैं, वो परिवार से शुरू होकर पूरे समाज को सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि परिवार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है।
1: जी हाँ,
0: अगर परिवार हमारे साथ होता है तो हम कहीं सारी समस्याओं से अपने आप ही दूर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: घर परिवार में बहुत से ऐसे अनुभवी लोग होते हैं जो उन समस्याओं को हमारे तक आने की नौबत ही नहीं देते हैं।
1: जी जी,
0: इसलिए परिवार के महत्व को समझे। अभी के समय में जो परिवार से एक दूसरे की जो दूरी बढ़ती जा रही है वो एक हमारे लिए गंभीर विषय है, क्योंकि जब एक परिवार दूसरे परिवार से टूटता है तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बीच में उनको, कुछ लोग ऐसे होंगे कशिश जो उस परिवार को मिलाने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में परिवार के सदस्यों को ही ये समझना होगा कि किस तरीके से हम हमारे परिवार को जोड़कर रख सकते हैं।
1: जी हाँ दिलेश जी, ये बात आपने सही कही। तो ऐसे में परिवार को मजबूत बनाने का कार्य परिवार के घर के सदस्य ही कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि आपने बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परिवार में दूरी लाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में श्रोता साथियों उन प्रयासों को हम कह सकते हैं कि विफल करने की हमें कोशिश करनी है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है अंजलि जी, और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना एक और पैरा सा गीत यहाँ पर साथियों को सुनवाए हम।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे आज कार्यक्रम में हमारी परिवार को एकजुट रखने को लेकर जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो।
0: एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच श्रोता साथियों आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं तो आप भी अपने फरमाइश के गीतों को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, PH पप्पी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मरहरा से नसीब हबीब अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सहेज हसन अब्बासी, अलम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी जी। इस गीत के अनुरोध करता है सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, मास्टर समराज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही वर्मा, ऐशिका और श्वेता जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है पंडपोर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को वागट रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने किशोर कुमार जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोपर गांव से। फिल्म का नाम है अलग अलग, गीत के बोल हैं दिल में आग लगाए सावन का। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुरेश मालोदी, वर्षा जी मालोदी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, संतोष भाड़की, सुकन्या, सरिता जी भाड़की। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं सलार पेलगाम कश्मीर से, पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जंतीर कौर, गुरप्रीत और लवप्रीत जी। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं राजना गाँव छत्तीसगढ़ से, बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, बीबी आराध्या जी। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा मध्य प्रदेश से, बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी शिखरा डावर। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं शेख हजीद और अनस जी। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से जुड़ना चाह रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। भागपत से जुड़ना चाह रहे आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल में आग लगाए। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला मऊ से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। इस गीत की फरमाइश करता है मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादी जी अंसारी। गाजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे जनकपुरी सहारनपुर से, जोन डिकिस्टो, रोजे डिकिस्टो, पर डिकिस्टो, विलेज डिकिस्टो। इस गीत के अनुरोध करता है कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावले पुणे से जुड़ना चाह रही हैं अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी, विशाखा सोनवनी जी। इसे भी जुड़ना चाह रही भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चीपा। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। खेल बाजार पानीपत से जुड़ रही नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तब तक आप सभी बने रहिएगा श्रोता साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाकोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है वो कौन थी, गीत के बोल हैं नैना बरसे रिमझिम रिमझिम पिया। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है श्याम बदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक और भी साथी जुड़ना चाह रहे पंजाब से संतोष कौरव ज्योति, इसी भी जुड़ना चाह रही नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर, मलकापुर से जुड़ना चाह रही नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी, बक्सर बिहार से जुड़ना चाह रहे सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश शाहू जी, बिहार से जुड़ रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, अलीबाजी और दानिश जी अंसारी, बाजार बक्सर से जुड़ रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी, गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं शिषपाल जी, कोहका बलाई से जुड़ रहे हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल, नंदिनी जी जंगेल, सोकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि जंगेल, ओशिका जंगेल, आदित्य और अंजलि जी जंगेल। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल ही एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मय मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू और कुंती जी शाहू। भागपत से जुड़ रहे जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। जवाहरनगर दुर्ग से जुड़ रहे हैं आरसी कामड़ी, करुणा मीना, अश्विन विपुल जी कामड़ी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आशिकी, गीत के बोल हैं बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुमार सोनू जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है राजगढ़ मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है मुकंदर का सिकंदर। गीत के बोल हैं, रोते हुए आते हैं सब। इस गीत की फरमाइश करता है गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी टांगी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युधव जी। चचेड़ी छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बीबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सहारनपुर से समयुद मश्रम, साइना हसन, आगजा नाजिया, आफिया इब्राहिम और सदाम जी। हरियाणा से जुड़ रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, रोते हुए आते हैं सब। फिल्म का नाम है मुकंदर का सिकंदर। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। तो श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर। गीत के बोल ही ज्योति से ज्योति जलाते चलो। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुसरत सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमो और मानस सिंह राज। बरेली से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शशिम अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर जी अंसारी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, ज्योति प्रहलाद जी वर्मा और मुरली और अमित जी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है ज्योति से ज्योति जलाते चलो। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों अभी हमने लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे ज्योति से ज्योत जलाते चलो। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुड़वारा से। फिल्म का नाम है क्रांति। गीत के बोल हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद यान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद याशीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, बेबी बॉय हिमांश जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायल, प्रतिपेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना जी देशमुख। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। नई बस्ती गंजडवारा से जुड़ रहे हैं मोहम्मद याशीन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तोसीफ हाशमी, तोइनूर हाशमी और कलीम अंसारी जी। श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्जुना जी कुम्भार। पुनावली से जुड़ना चाह रही हैं अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी, साइशा सोनवनी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा से। फिल्म का नाम है शोर, गीत के बोल हैं एक प्यार का नगमा है। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और मनोज कुमार जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कुरावली से साइद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद फेक जी अंसारी। कुंभार गली कोलकाओ से जुड़ रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। नवाशहर पंजाब से जुड़ना चाह रहे हैं गंगदीप थांदी, दिव्या कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका, वाणीजी थांदी। राहुल नगर अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं सिद्धार्थ घोड़ानी, अर्चना दाई घोड़ानी, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन जी शिंडे। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है शोर, गीत के बोल हैं एक प्यार का नगमा है। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और मनोज कुमार जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों के फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़की जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबुस्सम जी। बनारस से जुड़ रहे मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। पंडरिया छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल, भारती जी बघेल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। हरिद्वार से जुड़ना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी। जोधपुर राजस्थान से जुड़ रही हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं फाजिका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिवानशी खेड़ा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पतरिया छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कहो ना कहो प्यार है। गीत के बोल हैं जाने मन पलट तेरी नज़र। इस गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नरेन नेताम कुसुम नेताम। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी वकील वाल्मीकि धाड़ी नीनाजी धाड़ी सप्रेल जी धाड़ी। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रही हैं विकास बंसोड़ी रेखा बंसोड़ी अदिति बंसोड़ी और वैभव सिंधी जी। खंडाला से जुड़ रही हैं आकाश सरुदी और प्रिया सरुदी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी बबीता मिलगानी सुभाष योगी बब्बू डब्बू जी। दादरी गेट भवानी से जुड़ रही कृष्णा मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा कुनहाल जी मेहरा। अकोट से जुड़ना चाह रही विनायक भेंडी श्रीमती मंगला भेंडी विजय शुभम भेंडी पवन जरिए सजीव डी डाबेराव। पटेल नगर मालोट से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झाजोरिया गीता रानी झाजोरिया गंदीप झाजोरिया अर्जु झाजोरिया और गुड्डू जी। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे अजित कसाना माया देवी ऋतिक आदित्य जी कसाना। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाज पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जाने मन पलट तेरी नज़र। तब तक आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत की बोल ही भंवरे ने खिलाया फूल। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। धादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से बाबा साहेब कणकर, साखरबाई कणकर, परवेश्वरी रोहिणी, ईश्वरी कणकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। झारखंड से जुड़ना चाह रहे अब्बास आलम, मजद अली, लाडली और निशा जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सप्रिल जी धाड़ी। भेड़शोर महाराष्ट्र से जुड़ रही नंदकिशोर घटे, सगिता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजे बी टू, पी बी कुतलेश जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। कोपरगांव से पेंटर मतीन, मसूदा, दानिश खान जी। पंजाब से जुड़ना चाह रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही भंवरे ने खिलाया फूल। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और फिल्म का नाम है प्रेम रोग। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अवारपुर से। फिल्म का नाम है दयावान, गीत के बोल हैं आज फिर से तुम पर प्यार आया हम। इस गीत की फरमाइश करता है शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन शेख, फिजा शेख, फारूक शेख, अश्मिरा जी शेख, जिनस शेख, अफरफान शेख, अब्दुल्लोही वाला और शाहिदी शेख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूला श्रीवास, रंजू शाहू जी। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से हीरामणि शेंडी, शिलादेवी शेंडी, सिद्धार्थ गोड़ानी। अंबाला से जुड़ना चाह रही हैं रविल कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत गुर की रश, गुरशब्द सिंह राहुल। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। इस गीत की अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रही हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जी जाधव और संगीता जी जाधव। मॉडल ट्यून कर्नल से जुड़ रहे हैं सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, ईश्वर शर्मा, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर जी। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं राजेश सेन और सुरेखा जी सेन। पटियाला दुर्ग से जुड़ रहे हैं संजय शाहू, सजिता शाहू, शशंक शाहू, सीमा जी शाहू। यताला महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं शंकरला जयसवाल, गणेशला जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जयसवाल और दुर्गेश्वरी जयसवाल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्रपति संभाजीनगर से। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत की बोल है टिप टिप बरसा पानी। इस गीत की फरमाइश करता है राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद मराठवाड़ा से। सुधाकर राजयादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायल, प्रशांत देशमुख, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवर सानवी देशमुख और हर्षिता देशमुख। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे भगवान पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी पाटिल, दादा सार्थक जी पाटिल, कुमारी सानिका जी पाटिल। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ रहे मास्टर विठल सुरोसी, सुषमा सुरोसी, परिधि सुरोसी, मायराजी सुरोसी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे रुपेश संगे, महेश संगे, ब्रजेश संगे, प्रतेश संगे और संगे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सिंधी बुजुर्ग से जुड़ रहे हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नूजी वड़तकर। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस जी राज। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है टिप टिप बरसा पानी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है राहुल नगर अमरावती से। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू ने। इस गीत की फरमाइश करता है सिद्धार्थ गोड़ानी, अर्चना गोड़ानी, प्रणय प्रसिद्धि ही रामन जी शेंडी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगह परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, जगदलपुर बक्सर से जुड़ना चाह रही पूनम नायडू जी, खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही अब्दुल गफ्फार डावर जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही सुन सुन बरसात की धुन। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपकी अपनी फरमाइश के गीतों को वाकट रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मई देखाय तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपणा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
1: होवे अगर पेड़ नी रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
5: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जई वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर युवा के जीवन से जुड़ा हुआ होता है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि क्या युवा अब सपने कम और दबाव ज्यादा महसूस करते हैं। श्रोताओं, कभी युवावस्था को सपनों की उम्र कहा जाता था, ये वो समय माना जाता है कशिश जब युवा अपने भविष्य की कल्पना करते हैं,
0: बिल्कुल
1: बड़े लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उत्साह के साथ वो आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन आज का दौर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज के युवाओं के पास अवसर तो पहले से अधिक है, लेकिन साथ ही चुनौतियां और दबाव भी कई गुना बढ़ गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आज का युवा सचमुच अपने सपनों को जी रहा है या फिर वो दबावों के बोझ तले अपने सपनों को कहीं खोता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर हमारी बातें जरूर रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ में। लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: जी हाँ, तो आप सभी बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं, बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है। बात कर रहे हैं कि आज के हमारे युवा साथी क्या सपने कम और दबाव ज्यादा महसूस करने लगे हैं। साथियों, ये जो प्रश्न है वो हमारे युवा साथियों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं जागृति जी, वो देश की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनके सपने, उनकी सोच, उनका उत्साह, साथ ही उनका आत्मविश्वास ही समाज और राष्ट्र के भविष्य को दिशा देते हैं। कहा जाता है कि युवावस्था वह समय है जब इंसान सबसे बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए सबसे अधिक मेहनत भी करता है। लेकिन साथियों, आज का दौर पहले जैसा नहीं रहा। तकनीक ने जीवन को आसान तो बनाया है, अवसर भी बढ़े हैं, नई नई संभावनाएं सामने आई हैं, लेकिन इसके साथ ही युवा साथियों के जीवन में मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के साथ साथ असुरक्षा भी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवावस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान और संभावनाओं से भरा चरण होता है। इसी समय व्यक्ति अपने भविष्य की दिशा भी तय करता है। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को बताते हैं कि युवाओं के कई सारे सपने होते हैं कि वो कभी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, मतलब उनके मन में ये रहता है कि हम कुछ न कुछ जरूर बने।
0: बिल्कुल,
1: और वो सपने भी देखते हैं। श्रोताओं, सपने ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब सपनों की जगह डर, चिंता और असफलता का भय ले लेता है, तब युवाओं का आत्मविश्वास प्रभावित होने लगता है। कशिश
0: जी,
1: आज हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा अपने मन की सुनने की बजाय परिस्थितियों और अपेक्षाओं के दबाव में निर्णय लेने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। पढ़ाई हो, नौकरी हो या फिर व्यवसाय, हर जगह आगे निकलने की होड़ दिखाई देती है। युवा ये महसूस करता है कि यदि वो दूसरों से पीछे रह गया तो उसका भविष्य कैसा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार बैठते हैं कशिश, और अवसर सीमित होते हैं। ऐसे माहौल में युवा लगातार तनाव महसूस करते रहते हैं। वो अपने सपनों के बारे में कम और परिणामों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं।
0: जी जी,
1: प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है श्रोताओं, लेकिन जब ये आत्मविश्वास को कम करने लगे तब ये दबाव का रूप भी ले लेती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही अगर बात करें कि युवाओं पर बढ़ते दबाव के कारण क्या हैं, तो सबसे पहला कारण तो यही है साथियों कि पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव उन पर रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आज लगभग जैसा कि आपने बताया कि हर क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ चुकी है। छोटी सी नौकरी के लिए भी हजार उम्मीदवार आवेदन करते हैं। ऐसे में युवाओं को ये लगता है कि यदि वे सफल नहीं हुए तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: साथियों, यही सोच कई बार पढ़ाई को सीखने का माध्यम नहीं बल्कि तनाव का कारण बना देती है। हम देखते हैं कि साथ साथ परिवार की अपेक्षाएं भी होती है। जैसे कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल बने।
1: जी हाँ,
0: लेकिन कई बार ये अपेक्षा इतनी अधिक हो जाती है जागृति जी, कि हमारे युवा साथी स्वयं को लगातार दबाव में महसूस करने लगते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो परिवार की उम्मीदें टूट जाएंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल कशिश, क्योंकि भारतीय समाज में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की हर हमेशा कामना करते रहते हैं।
0: जी।
1: लेकिन कई बार यही अपेक्षा अनजाने में दबाव का कारण भी बन जाती है। कुछ युवा अपने मनपसंद क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन परिवार उनसे किसी दूसरे क्षेत्र को चुनने की अपेक्षा करता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे जो युवा है वो अपने सपने और परिवार की उम्मीदों के बीच में फंस जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: जब संवाद की कमी हो जाती है तब ये स्थितियाँ और भी कठिन हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, हम युवाओं को चाहिए कि वे अपने परिवार वालों से खुलकर बात करें, और परिवारों को भी युवाओं की रुचियों को समझने का प्रयास करना होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर

0: बात करें समाज में तुलना की संस्कृति की, तो दोस्तों आज तुलना जीवन का हिस्सा बन चुकी है। किसी से अधिक अंक लाने की तुलना, किसी की बड़ी नौकरी की तुलना, किसी का बड़ा घर है तो किसी की अधिक कमाई को देखकर तुलना करना।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, जब युवा लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं, जिसके कारण वे दबाव में आ जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। साथ ही सोशल मीडिया का प्रभाव भी एक कारण है साथियों, यानी कि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी सफलता, खुशियां और उपलब्धियां दिखाता है।
1: जी हाँ,
0: युवा जब दूसरों की चमक दमक देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए हैं। वास्तविक जीवन साथियों और सोशल मीडिया की दुनिया में अंतर समझ न पाने के कारण मानसिक दबाव युवाओं में बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण उनका स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि क्या युवा अब सपने कम और दबाव ज्यादा महसूस करते हैं, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी आज के इस विषय पर। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या युवा अब सपने कम और दबाव ज्यादा महसूस करते हैं,
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आज रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: नई तकनीकें आ रही है, अनेक पारंपरिक नौकरियां बदल रही है, इससे युवाओं के मन में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। कशिश
1: जी हाँ।
0: कई युवा ये सोचकर परेशान रहते हैं कि जो पढ़ाई वे कर रहे हैं क्या उससे उन्हें भविष्य में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चिंता उनके सपनों की ऊर्जा को कम कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में युवाओं को सीखते रहने और नए कौशल विकसित करने पर ध्यान देना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अगर बात करें तो लगातार तनाव और दबाव का असर केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं रहता साथियों, बल्कि इसका प्रभाव हमारे युवा साथियों के आत्मविश्वास पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है उनमें, साथ ही रचनात्मक सोच प्रभावित होती है, रिश्तों में दूरी आने लगती है। जागृति जी, जीवन का आनंद युवाओं के जीवन में कम होने लगता है, छोटी असफलताएं भी बहुत बड़ी होने लगने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण वे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और निरंतर तनाव में ही रहते हैं।
0: जी हाँ, और हम कह सकते हैं कशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, आज कई परिवार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में युवा जल्दी कमाने और परिवार की सहायता करने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: कई बार आर्थिक परिस्थितियां युवाओं को अपने सपनों से समझौता करने के लिए मजबूर कर देती है। वे अपनी रुचियों के बजाय ऐसे विकल्प चुनते हैं जो तुरंत आए उन्हें प्रदान कर सके।
1: जी हाँ,
0: हालांकि जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है श्रोताओं, लेकिन सपनों को पूरी तरह छोड़ देना समाधान नहीं है, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं कि दबाव का सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि तनाव, चिंता, आत्मविश्वास की कमी और निराशा जैसी समस्या युवाओं में बढ़ती दिखाई दे रही है। और कई युवा अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करते हैं, वे सोचते हैं कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं श्रोता साथियों, बल्कि समझदारी है।
1: बिल्कुल,
0: मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, साथ ही श्रोता साथियों, ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या आज युवा सपने देखना छोड़ रहे हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, आज भी युवा बड़े सपने देखते हैं, वे दुनिया बदलना चाहते हैं, नई तकनीक बनाना चाहते हैं, नए नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और साथ ही देश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन समस्या तो ये है जागृति जी कि सपनों के साथ साथ दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि सपने पीछे छूट जाते हैं और केवल संघर्ष ही दिखाई देता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारे युवा साथियों को अपने सपनों को पहचानना चाहिए, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा साथियों, छोटी छोटी सफलताओं का भी सम्मान करना होगा, असफलता को सीख के रूप में देखना होगा, समय का सही प्रबंधन करना होगा, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, साथ ही परिवार और मित्रों से खुलकर बात भी करनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करना शुरू करना होगा और अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपने करियर को चुनना होगा।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि युवाओं के सपने कम हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: वास्तव में आज के युवाओं के सपने पहले से ज्यादा है कशिश। वे नई खोज करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और वैश्विक स्तर पर पहचान भी बनाना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: समस्या सपनों की कमी नहीं है श्रोताओं, बल्कि बढ़ते दबाव की अधिकता है। सपने आज भी मौजूद हैं, लेकिन कई बार दबाव का शोर इतना बढ़ जाता है कशिश के सपनों की आवाज भी सुनाई नहीं देती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अपने सपनों को जिंदा रखिए और उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए।
1: जी हाँ,
0: और सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करिए। हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आपको ये समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल दूसरों से आगे निकलना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाना भी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं, समय प्रबंधन करना, सकारात्मक सोच विकसित करना, नियमित व्यायाम करना, अच्छे मित्रों का साथ और परिवार से संवाद, ये सब तनाव को कम करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही कशिश, असफलता को जीवन का हमें हिस्सा नहीं मानना है, बल्कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में श्रोता साथियों, आप हमेशा याद रखें कि सपने तभी पूरे होते हैं जब उन पर विश्वास हमारा बना रहता है।
0: बिल्कुल,
1: दबाव जीवन का हिस्सा है साथियों, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। दूसरों की अपेक्षाओं से पहले अपनी पहचान आप बनाइए, धीरे चलिए लेकिन अपने रास्ते पर चलिए।
0: बिल्कुल,
1: हर सफलता समय मांगती है और हर असफलता एक नई सीख देती है।
0: जी हाँ,
1: अपने सपनों को किसी की तुलना, डर या दबाव के कारण मरने मत दीजिए, क्योंकि हम युवा साथी हैं, हम सपने भी देखते हैं और दबाव भी महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, चुनौती ये नहीं है कि दबाव है, बल्कि ये है कि कहीं वह दबाव हमारे सपनों पर भारी न पड़ जाए।
0: जी हाँ,
1: जरूरत इस बात की है कि परिवार, समाज, शिक्षा व्यवस्था और स्वयं हम युवा मिलकर ऐसा वातावरण बनाए साथियों, जहां सपनों को उड़ान मिले, न कि वे अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाएं।
0: बिल्कुल कशिश, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि आज का युवा सपने भी देखता है और दबाव भी महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दबाव की संख्या पहले से कहीं अधिक हो गई है। प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाएं, सोशल मीडिया, आर्थिक चुनौतियां और भविष्य की अनिश्चितता हमारे युवाओं के सामने खड़ी हो चुकी है। लेकिन
1: हाँ,
0: इतिहास गवाह श्रोता साथियों की हर पीढ़ी ने चुनौतियों का सामना किया है और आगे बढ़ी है। आज के युवाओं को वही क्षमताओं को अपनाना होगा। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें और दबाव को अपनी पहचान न बनने दें।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोताओं, दबाव अस्थाई है लेकिन सपने जीवन को दिशा देते हैं। यदि सपने जीवित है तो उम्मीद भी जीवित है, और जहां उम्मीद जीवित है वहां सफलता का रास्ता भी अवश्य निकलता है।
1: बिल्कुल,
0: तो दबाव चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, सपनों की रोशनी को कभी पूछने मत दीजिए, क्योंकि वही सपने कल की सफलता, समाज की प्रगति और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव बनता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो भी बातें करी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: स्वीकार कीजिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम बच्चों के व्यक्तित्व विकास से जुड़े एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कशिश, जो उन्हें केवल एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज का हमारा विषय है बच्चों में सेवा और सहयोग की भावना कैसे विकसित करें।
0: जी हाँ,
1: आज का समय श्रोता साथियों तेजी से बदल रहा है। हर व्यक्ति अपनी पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारी में व्यस्त है, और बच्चों का अधिकांश समय जो है स्कूल, कोचिंग, मोबाइल और टीवी के बीच बीतने लगा है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में एक चिंता की बात यह है कि कहीं बच्चे केवल अपनी सफलता तक ही सीमित न रह जाएं। यदि बचपन से ही उनमें दूसरों की मदद करने और मिलजुल कर काम करने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की भावना विकसित हो जाए, तो वे जीवन भर संवेदनशील, जिम्मेदार और सहयोगी नागरिक बनते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे अभिभावकों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि शुरुआत में हम पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम का विषय काफी महत्वपूर्ण है। बात कर रहे हैं बच्चों में सेवा और सहयोग की भावना हम कैसे विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सहयोग और सेवा का मतलब केवल किसी बड़ी संस्था से जुड़कर समाज सेवा करना नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है अंजलि जी घर की छोटी छोटी बातों से। जब बच्चा अपनी माँ की रसोई में छोटी सी मदद करता है, पिता के साथ घर का कोई काम करता है, दादा दादी को दवा ला कर देता है, छोटे भाई बहन का ध्यान रखता है या फिर अपने मित्र की पढ़ाई में सहायता करता है, तभी श्रोता साथियों उसके भीतर सेवा की भावना विकसित होने लगती है।
1: बिल्कुल।
0: और ये छोटी आदतें आगे चलकर बड़े संस्कार बन जाती है। जैसा कि अंजलि जी हमने ये बात सुनी है और हमारे श्रोता साथी भी जानते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद कर रहे हैं साथियों, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, पड़ोसियों के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, तो बच्चे भी इन्हीं मूल्यों को सहज रूप से अपनाने लगेंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए माता पिता को केवल बच्चों को सीख देना ही नहीं बल्कि स्वयं भी सेवा और सहयोग का उदाहरण बनना चाहिए।
1: जी हाँ, यही कशिश बात आती है कि आज कई बार देखा जाता है कि माता पिता बच्चों को केवल पढ़ाई और प्रतियोगिता पर ध्यान देने के लिए ही कहते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये चीजें बहुत जरूरी है मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल आगे निकलना नहीं है बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। जो बच्चा सहयोग करना सीखता है बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। जो बच्चा सहयोग करना सीखता है वह टीम में बेहतर काम करता है।
0: बिल्कुल।
1: मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है।
0: जी हाँ साथियों,
1: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि घर बच्चों के पहली पाठशाला है। यदि माता पिता बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दें, जैसे कि अपना बिस्तर ठीक करना, अपने खिलौने व्यवस्थित करना, भोजन की मेज लगाने में मदद करना, पौधे को पानी देना, घर की साफ सफाई में सहयोग करना और उनमें जिम्मेदारी और सहयोग करना, तो उनमें जिम्मेदारी और सहयोग दोनों का विकास होता है। इससे उन्हें यह समझ में आता है कशिश कि परिवार एक टीम की तरह होता है जहां हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो दादा दादी और नाना नानी भी बच्चों में सेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे साथियों, तो उनके जीवन के अनुभव, संघर्ष की कहानियां और पारिवारिक संस्कार जो होते हैं वो बच्चों को दूसरों के प्रति सम्मान, धैर्य और सहयोग का महत्व सिखाते हैं।
1: जी जी
0: अंजलि जी, उनके साथ समय बिताने से

0: बच्चों में अपनापन और संवेदनशीलता बढ़ती है और साथ ही विद्यालय में भी बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि जब बच्चे समूह में गतिविधियां करते हैं, खेलते हैं, मिलकर परियोजनाएं तैयार करते हैं या किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी साझा करते हैं तो वे एक दूसरे की बात सुनना जानते हैं।
1: जी हाँ।
0: जिम्मेदारी बांटते हैं और मिलकर लक्ष्य पूरा करना भी सीखते हैं। साथ ही यही अनुभव आगे चलकर उनके सामाजिक जीवन में बहुत काम आता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। तो बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ दिली जी।
2: Tick-a-tack-a-tack-a-chick, tick-a-tack-a-tack-a-chick, tack, tick-a-tack-a-tack-a-chick, tack, tick-a-tack-a-tack-a-chick.

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि दादा दादी और नाना नानी बच्चों में सेवा की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं, और साथ ही विद्यालय भी किस तरीके से बच्चों के अंदर सहयोग की भावना विकसित करने में मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों यही कहना चाहेंगे कि सेवा की भावना केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कशिश कि पशु पक्षियों के प्रति दया रखें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, पानी और भोजन की बर्बादी न करें और पर्यावरण की रक्षा करें। जब बच्चा प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है, तब उसके भीतर व्यापक सामाजिक चेतना विकसित होती है।
1: जी हाँ,
0: आज के डिजिटल युग में श्रोता साथियों एक चुनौती यह भी है कि बच्चे स्क्रीन पर अधिक समय बिताते हैं और वास्तविक सामाजिक संबंध कम बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवार को चाहिए श्रोता साथियों कि बच्चों को ऐसे अवसर दें जहां वे लोगों से मिलें, सामूहिक खेल खेलें, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें, दूसरों की मदद करने का अनुभव प्राप्त करें। इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है और समाज के प्रति जुड़ाव भी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों तो बच्चों में सेवा और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए उनकी हर छोटी छोटी मदद की सराहना आपको करनी चाहिए। यदि बच्चा किसी की सहायता करता है, अपना सामान साझा करता है या बिना कहे कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा माता पिता को अवश्य करनी चाहिए अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: इससे बच्चा वह समझता है कि अच्छे कार्यों का महत्व अच्छा होता है, वह भविष्य में भी ऐसे कार्य करने के लिए वह प्रेरित होता है। साथ ही दोस्तों, ये भी जरूरी है कि बच्चों को ये समझाया जाए कि सेवा का अर्थ दया दिखाना नहीं है बल्कि समानता और सम्मान के साथ किसी का साथ देना भी है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चा ये समझता है अंजलि जी कि हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है, तब उसके भीतर करुणा, सहानुभूति और सहयोग की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। ऐसे में दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि सेवा और सहयोग कोई एक दिन में सिखाई जाने वाली बात नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों, पारिवारिक वातावरण और अच्छे उदाहरणों और निरंतर अभ्यास से विकसित होने वाला एक जीवन मूल्य है। यदि हम बचपन में ये बीज बच्चों में बो देंगे तो भविष्य में ही ये बच्चे एक संवेदनशील, जिम्मेदार और सहयोगी समाज का निर्माण कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बच्चों के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान केवल उसकी बुद्धिमत्ता, अंकों या उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि कशिश इस बात से होती है कि वे दूसरों के प्रति कितना सम्मान और संवेदनशीलता और सहयोग का भाव रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में सफलता तब और अधिक सार्थक बन जाती है श्रोता साथियों जब उनके साथ मानवीय मूल्य भी जुड़ जाते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारी, जिम्मेदार और सरहृदय भी बने, तो हमें बच्चों से ही उनके भीतर सेवा और सहयोग की भावना का विकास कराना होगा।
1: बिल्कुल,
0: सेवा की भावना किसी उद्देश्य से नहीं आती बल्कि रोजमर्रा के अनुभव से विकसित होती है। जब बच्चे घर में बड़ों का सम्मान करते हुए दिखते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तब वे बिना कहे ही इन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें अच्छे उदाहरण देना।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि सेवा केवल आर्थिक सहायता का काम नहीं है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना और किसी मित्र की पढ़ाई में मदद करना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और घर के कामों में हाथ बटाना, ये भी एक सच्ची सेवा का ही रूप है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चे इन छोटे छोटे कार्यों का महत्व समझते हैं तब उनके भीतर यह विश्वास विकसित होता है कि साथियों हर व्यक्ति अपने स्तर पर समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर जोर दिया जा रहा है अंजलि जी, तब बच्चों को यह सिखाना जरूरी हो जाता है कि आगे बढ़ने का सही मतलब क्या है।
0: बिल्कुल,
1: आप उन्हें बताएं कि आगे बढ़ने का सही अर्थ दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं होता बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी का हाथ थामकर उससे भी आगे बढ़ने का अवसर देना होता है।
0: जी जी,
1: यही सोच श्रोता साथियों उन्हें एक अच्छा मित्र, अच्छा परिवार सदस्य, अच्छा नागरिक और भविष्य का संवेदनशील नेता बनाती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाएं जहां मैं से अधिक हम का महत्व हो, जहां

0: संयोग को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति माना जाए। और जहाँ बच्चों को यह महसूस हो कि किसी की मदद करना केवल एक अच्छा काम नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि एक सुंदर जीवन जीने का तरीका है। याद रखिए कि बच्चे वही बनते हैं जो वे रोज देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। यदि हम उन्हें बचपन से सेवा, सहयोग, करुणा और अपनत्व के संस्कार देंगे तो वे बड़े होकर केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का सहारा बनेंगे। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर विश्वास से भरे समुदाय, संवेदनशील समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम हर बच्चे के मन में सेवा का एक छोटा सा बीज आज अवश्य बोएं, ताकि आने वाले कल में वही बीज मानवता, सहयोग और सद्भाव का विशाल वृक्ष बनकर पूरे समाज को छाया, शक्ति और नई दिशा दे सके।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो इन्हीं बातों के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातें हमारी ढेर सारी हो चुकी है, समय भी अब हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम से हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में अपने नियत समय पर ही एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
1: होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
0: होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
4: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
5: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा अमरा सब भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपडू सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणी मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो आज कार्यक्रम में अमारी अब तक की बातचीत नु विषय है कि धान ने रोपाई ने बाद आपने कई कई बातों नु ध्यान रखवानी जरूरत है। तो भाई बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की खणाका नी बातें थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमरता रहसु आपड़ो रेडियो अपनी बातें वाघ रेडियो 90.8 FM माते।

0: इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें हैं आपके उत्पादन पे प्रभाव डालती है।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ में हम जैसे प्रबंधन की बात करते हैं रोपाई के बाद, तो इसमें एक तो ये है कि हमेशा जो धान है हम सोचते हैं कि गहरे पानी की जरूरत होती है या बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है आवश्यकता अनुसार पानी की ही जरूरत होती है। तो हमें ध्यान रखें कि 7 दिन के अंदर, जैसे 2-3 दिन हो गए रोपाई के, तो उसमें हल्का पानी रखें। अगर बारिश आ रही है, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो आपको उस पानी को निकाल देना है,
1: बिल्कुल
0: ज्यादा भरे तो, बाकी हल्की जो है आप रखिए। और ध्यान रहे कि पानी है 2 से 5 सेंटीमीटर जो है वो ही पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा अगर लगता है तो आप उसको निकासी के माध्यम से निकाल दें, नहीं तो आपकी फसल खराब होने का चांस रहता है। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है कि बारिश नहीं होती है और होती है तो बहुत तेज हो जाती है, तो इन दोनों कंडीशन में भी हमें ध्यान देना है कि नहीं हो रही है तो आपको, अगर आवश्यकता है, अगर उसमें नमी खत्म हो रही है तो आपको पानी देने की जरूरत है, लेकिन आप हल्का पानी दे आवश्यकता अनुसार। इसके साथ में अगर ज्यादा बारिश हो गई तो आपको उसकी निकासी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इससे क्या होगा कि जब हम ज्यादा पानी को बाहर निकाल देते हैं या आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं, तो इससे ये होता है कि तो आपकी जड़ें मजबूत होती है, दूसरा है जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, वो अच्छे से बढ़ते हैं, और इसमें आपके पानी की बचत भी होती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: इसके साथ में जैसे आप देखोगे तो कई बार क्या होता है कि धान की रोपाई तो हमने कर दी, लेकिन उसमें बहुत प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है बारिश का मौसम है तो खरपतवार तो होंगे ही, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार जो है, अगर देखते हैं आप आपके खेत में, तो 15 से 20 दिन के अंदर आप जो है देखेंगे खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं।
1: जी जी।
0: और इन दिनों में हमें देखने की आवश्यकता है, तो इस दौरान जो है आप जो एक तो हमारे यहाँ पे कल्पा निकालते हैं, आप उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। दूसरा है कि कल्पा के माध्यम से अगर नहीं होता है तो कुछ जो है हाथ से आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आपकी फसल पे उसका प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जब खरपतवार और फसल दोनों साथ में होती है तो दोनों में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है उनमें।
1: जी जी।
0: तो कई बार क्या होता है कि खरपतवार है आपकी फसल को कमजोर कर देते हैं और उससे आपकी पैदावार बहुत कम होगी, तो ये हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही जैसे अगर आप निराई गुड़ाई समय समय पर करते हो, तो इससे बहुत सारा जो है प्रभाव पड़ता है अच्छे के लिए। जैसे आपका उत्पादन तो अच्छा होगा ही, लेकिन पौधों की ग्रोथ है वो एक अच्छी होगी, मिट्टी जो है उसमें हवा का जो संचार है वो अच्छे से होगा।
1: जी हाँ।
0: जड़ों की जो विकास है वो बहुत अच्छे से होगा अगर आप वहाँ करते हो तो। और इसमें क्या कि पौधों को पोषण भी बहुत अच्छे से मिलता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि धान की रोपाई में हमें सही देखभाल कैसे करनी, रोपाई के बाद हमें सही देखभाल कैसे करनी है, जिसमें आपने हमें बताया कि रोपाई के बाद 7 दिन तक हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, पानी का सही प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण हमें कैसे करना है। यहीं सर अब बात आती है पोषण प्रबंधन और कीट रोग की निगरानी की, तो ये हमारे किसान भाई बहनों को कैसे करनी है।
0: तो जैसे आपने बताया अभी कि पोषण प्रबंधन कैसे करें और कीट प्रबंधन कैसे करें।
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए पोषण प्रबंधन की हम जहाँ बात करते हैं, तो पोषण हमारी सभी फसलों को जरूरी होता है, उसी तरह से धान को भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें आप देखोगे कि हमारे क्षेत्र में हम बात करते हैं हमारे परंपरागत खाद की, तो उसके माध्यम से हम पोषण प्रबंधन करते हैं। परंपरागत दवाएं जो रासायनिक उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम घरेलू स्तर पर बनाकर उनका उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जिसमें मुख्य प्रकार से आप देखोगे कि अगर खाद की आवश्यकता तो वर्मी कंपोस्ट या उखेड़ा का खाद हम डालते हैं जो गोबर से तैयार होता है।
1: जी जी।
0: तो वो हमें समय समय पर देखना होगा कि आवश्यकता है तो आपको डालना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी फसल का ग्रोथ अच्छा होगा और पैदावार भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह अगर जैसे बात कर जीव अमृत है, घन जीव अमृत है, गोमूत्र है, कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है, तो इनका जो डालना है वो स्वाभाविक है, लेकिन वो आवश्यकता अनुसार। अगर आप कहीं ज्यादा डाल देते हो तो हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है पोषण की दृष्टि से। दूसरा है कि जैसे आपने बोला कि कीट और रोग है उसकी निगरानी कैसे रखें।
1: बिल्कुल।
0: तो हमेशा क्या होता है कि बारिश के मौसम में कुछ समय ऐसा होता है कि बहुत प्रकार के कीट और रोग लगना शुरू हो जाते हैं या लग जाते हैं, तो इस स्थिति में हमें सबसे पहला काम यह है कि हर 3 से 4 दिन आप अपने खेत का अवलोकन करते रहें।
1: बिल्कुल।
0: अगर इस तरह का कोई प्रकोप आपके सामने आता है तो उसके बाद में फिर आप जो है उसकी इलाज के लिए या उसके उपचार के लिए आप आगे कदम बढ़ाएं। अगर मुख्य तौर से देखें तो आपको दिखेगा कि पत्तियां मुड़ रही है, अगर हम रोगों की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं तो दूसरा है पत्तियां पीली पड़ जाती है, सूख जाती है, तना है वो आपको बीच में से कटा हुआ नजर आएगा कि उसमें कीट लग जाता है। ये जो कीड़े होते हैं उनकी संख्या ज्यादा तो नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह से आपको उसको देखना पड़ेगा।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे क्या है, देखोगे आप तो जो हमारे धान है उसमें जो तना को छेदने वाला जो छेदक होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कई बार लग जाता है।
1: जी जी।
0: तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि एक तो हमारे जो परंपरागत दवाइयां हैं जो हम घर पर तैयार करते हैं उनका उपयोग करें। जैसे हम दस पड़ने की बात करते हैं, हम कंडा पानी की बात करते हैं, हम जैसे नीम का घोल की बात करते हैं, तो इनका उपयोग करें आप। 7 दिन में आप छिड़कते रहे तो कीट है जो हानिकारक है वो वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कि जैसे अगर ज्यादा दिक्कत है तो फिर आप जिस 3 से 4 दिन के उसमें भी अंतराल में भी छिड़क सकते हैं, तो उसकी आवश्यकता अनुसार देखें। लेकिन ये है कि ज्यादा ना छिड़के, उसका भी ध्यान रखें क्योंकि ज्यादा नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ में जैसे हम जो वर्षा पानी की बात करते हैं तो वर्षा का पानी है उसमें भी अगर ज्यादा भरा रहता है तो वहाँ पे बहुत प्रकार के कीड़े आके बैठने लगते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा तो नहीं भरा है। अगर ज्यादा है तो उसके लिए आप उसका प्रबंधन करें निकालने की। दूसरा कई बार क्या होता है कि कटाव लगना शुरू हो जाता है खेतों में, तो उस कटाव को रोकने के लिए आप पहले से ही जो हो जैसे हम करते हैं परंपरागत तरीके से तो उसको पहले से ही रोके आप, ताकि जो खेत का जो पोषण है वो बहकर कहीं और ना जाए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, यही अब बात आती है कि रोगों की पहचान कैसे हमारे किसान भाई बहनों को करनी है और किस तरीके से आदिवासी जो किसान है वो पारंपरिक उपाय अपना कर इस समस्या से बच सकते हैं।
0: जी, तो अगर हम बात करते हैं जैसे पहचान की, तो पहचान तो सबसे अच्छा संसाधन है हम खुद हैं कि हम खुद वहाँ पे जाके हमारे खेत का अवलोकन करें और हमें पता होता है कि पहले से ही कि कौन कौन से कीट है वो वहाँ पे लग रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उसको आपको पहचान करना है। पहचान करने के बाद में आपको देखना है कि कौन सी दवा है जो हम बनाकर उसमें दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर कम प्रभाव दिखता है तो आप 10 पर्णी छिड़क सकते हैं, अगर ज्यादा प्रभाव दिखता है तो 10 पर्णी को भी आप बार बार छिड़क सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह आपके जो नीम आधारित जो दवाइयां हमारी उसका उपयोग कर सकते हैं ताकि वो कीट है वो ज्यादा प्रकोप नहीं रहेगा उनका और धीरे धीरे वो चले जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो इसके साथ में जैसे पत्ती मुड़क की बात करें, पत्तियां मुड़ जाती है उसके जो अंदर क्या होता है कीड़ा लग जाता है पत्ती के जो हरे रंग को खा जाता है वो, तो उस तरह से अगर है तो यहाँ पे आपकी नीम आधारित दवाई है वो बहुत अच्छे से काम करेगी।
1: जी जी।
0: अगर जैसे फफूंद जैसे लग जाती है, हम फफूंद जैसे बोलते हैं जो जड़ों में होती है, अगर ऐसा होता तो वो क्या होता है निचला भाग सूखने लगता आपका जड़ों के पास में, तो इस दौरान क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या शत्रु कीट जो होते हैं उनका प्रकोप ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे आप जो है 10 पर्णी का नीम आधारित या कंडा पानी अगर आप देते हैं तो ग्रोथ के साथ साथ में कीड़ों का प्रबंधन भी होगा। तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे हमारे क्षेत्र की जो पारंपरिक उपाय है तो उसकी बात करते हैं, तो यहाँ गोबर खाद का उपयोग करना, कंपोस्ट है या उकेड़ा है वो हमें ध्यान देना चाहिए, वो समय समय पर करें। वर्षा जल है उसको खेत में रोके, व्यर्थ ना बहने दे। इसके साथ में जैसे खेत की मेड़ों पर घास या स्थानीय पेड़ सुरक्षित रखें ताकि कटाव जैसी स्थिति पैदा न हो। दूसरा कि जैसे मिश्रित खेती और परंपरागत खेती को बढ़ावा दे। इसके साथ में स्थानीय धान की किस्में जो है वो उसका संरक्षण करें और उनको उगाए।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हम परंपराओं से जानते हैं कि कौन से कीट लगते हैं, कैसे प्रबंधन करना है, तो हमें उन्हीं विधियों को अपनाते हुए हमारा जो धान की खेती है उसका प्रबंधन करना है, और अगर आप सही से प्रबंधन करेंगे तो आपकी उपज है वो बहुत बेहतर होगी और यहाँ पे हमारे जो परंपरागत किस्में हैं उनका भी संरक्षण होगा।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: બાયણબોનો જેમકી આવડે આપણા વ્યાસમાં માંગીલાલ જે જોડે તક હતા ને એણાએ આપણાને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા આકાની વાતે વતાડી હે કે ધાનની રોપાઈને બાદ આપણાને હરતે રોજ એ ખેતરનું નિરીક્ષણ કરવું હે, પોષણનું પ્રબંધન કરવું હે, કીટનું પ્રબંધન કરવું હે ને ઘણા આકાની વાતનું ધ્યાન રાખવાની જરૂરત હે। આશા કરું હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા। સૂટા પડવાનું તો સૂટા તો પડ, પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है। सुनना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अंजलि, अक्सर हम कहते हैं कि समाज बदलना है, लोगों को जागरूक करना है, अपनी बात सब तक पहुंचानी है, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी हमने ये सोचा है कि बदलाव केवल बोलने से नहीं बल्कि सुनने से भी आता है। जब हम किसी की बात पूरे मन से सुनते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसके अनुभवों का सम्मान करते हैं, तभी एक संवेदनशील समाज का निर्माण होता है।
0: जी हाँ,
1: आज के सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे गुण की जो देखने में छोटा लगता है लेकिन समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत रखता है।
0: बिल्कुल।
1: विषय है श्रोता साथियों, सुनना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत रहने वाली है, सुनना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: तो अंजलि, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है। हर दिन हम अनेक विचार, संदेश, समाचार और राय सुनते हैं और साझा भी करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सोशल मीडिया, मोबाइल और डिजिटल माध्यमों ने हर किसी को बोलने का अवसर भी दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हम उतनी ही गंभीरता से सुन भी रहे हैं?
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सुनना केवल कानों से शब्द ग्रहण करना नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि सामने वाले की भावनाओं, अनुभवों और आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास है। जब समाज में लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, तब संवाद कमजोर पड़ने लगता है, विश्वास कम होने लगता है और समस्याएं बढ़ने लगती है। इसलिए श्रोता साथियों, सुनना केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
0: जी हाँ।
1: सच्चा स्वराज केवल अपनी बात रखने का अधिकार नहीं देता है जागृति जी, बल्कि दूसरों की बात को सम्मान पूर्वक सुनने का संस्कार भी सिखाता है।
0: जी हाँ।
1: जब समाज में हर व्यक्ति की आवाज को महत्व मिलता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और विकास की दिशा सही तय होती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम अक्सर किसी की बात सुनते हुए भी वास्तव में नहीं सुनते हैं। हमारा मन पहले से ही उत्तर देने या अपनी बात कहने में इतना व्यस्त रहता है। वास्तविक सुनना तब होता है श्रोता साथियों, जब हम बिना पूर्वाग्रह के सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करें।
1: जी जी।
0: जैसे कि एक किसान जब अपनी खेती की समस्या बताता है, एक महिला जब अपनी कठिनाइयों को साझा करती है, एक युवा जब अपने सपनों और चुनौतियों की बात करता है श्रोताओं, या कोई बुजुर्ग को अपने अनुभव सुनाता है, तब केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन के अनुभव हमारे सामने होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम उन्हें ध्यान से सुने अंजलि, तो समाज को बेहतर बनाने के बहुत सारे रास्ते हमें दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों का एक चलता फिरता विद्यालय है।
0: बिल्कुल।
1: किसी ने संघर्ष किया है तो किसी ने सफलता पाई है, किसी ने कठिन परिस्थितियों से लड़कर जीवन को आगे बढ़ाया है। यदि हम इन अनुभवों को सुनेंगे श्रोता साथियों, तो बिना ठोकर खाए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: यही कारण है कि कहा जाता है कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, और अनुभव तक पहुंचने का सबसे सरल माध्यम है ध्यान पूर्वक सुनना।
0: बिल्कुल अंजलि, कई बार हम देखते हैं कि समस्या अचानक पैदा नहीं होती, और वो धीरे धीरे लोगों की शिकायतें, सुझाव और चिंताओं के रूप में सामने आती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर समाज, पंचायत, प्रशासन या परिवार समय रहते इन आवाजों को सुन ले, तो बड़ी समस्याओं को रोका जा सकता है। गांव में पानी की कमी हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो या रोजगार का प्रश्न हो, इन सब का समाधान तभी संभव है जब पहले लोगों की वास्तविक जरूरतों को सुना जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि विश्वास किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तब उसके मन में अपनापन और भरोसा बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार में माता पिता यदि बच्चों की बातें सुने, बच्चे बुजुर्गों के अनुभव सीखें, शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या सुने और समाज अपने नागरिकों की आवाज सुने, तो संबंध अधिक मजबूत बनते हैं। जहां सुनने की संस्कृति होती है श्रोता साथियों, वहां विवाद कम और सहयोग अधिक होता है। क्योंकि जागृति जी, लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता की भागीदारी।
0: बिल्कुल।
1: ग्राम सभा, पंचायत, जन सुनवाई और सामुदायिक बैठकें इसलिए होती हैं ताकि हर व्यक्ति अपनी बात रख सके और उसे सुना जाए। यदि केवल कुछ लोगों की आवाज सुनी जाती है और बाकी लोग अनसुने रह जाते हैं जागृति जी, तो स्वराज जो है वो अधूरा रह जाता है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज वही है जहाँ निर्णय लोगों की आवश्यकताओं और सुझावों को सुनकर लिया जाए।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि समाज के विकास में हम बार बार हमारे श्रोता साथियों को हर कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि महिलाओं और युवाओं और बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार इनके विचार को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, जबकि यही वर्ग नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आते हैं।
1: जी हाँ।
0: अगर युवाओं को सुना जाए तो रोजगार, शिक्षा और नवाचार के नए रास्ते खुलते हैं। अगर महिलाओं की बात सुनी जाए तो परिवार और समाज दोनों अधिक संवेदनशील बनते हैं, और अगर बच्चों की जिज्ञासाओं को सुना जाए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से सुनना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ये बातें आगे और भी निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि सुनना केवल कानों का नहीं मन का भी कार्य है, इसी के साथ हम जान पाए कि हर आवाज एक अनुभव है। समाज की समस्याएं पहले सुनाई देती है। इसी के साथ हमने जाना कि सुनने से बनता है विश्वास।
1: बिल्कुल।
0: लोकतंत्र और स्वराज की आत्मा के बारे में जाना और उसी के साथ जागृति जी हम जान पाए कि महिलाओं, युवाओं और बच्चों की आवाज को भी सुना जाना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: अब यही बात आती है कि सुनना विवाद नहीं समाधान पैदा करता है।
1: बिल्कुल।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, अधिकांश विवाद इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने के बजाय केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक सामने वाले की पूरी बात सुन लें तो कई गलत फहमियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं।
1: जी हाँ।
0: सुनना किसी भी समस्या के समाधान की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल अंजलि। और इसी के साथ सामुदायिक रेडियो और सुनने की संस्कृति को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बातें बताएं तो सामुदायिक रेडियो केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है श्रोताओं, बल्कि समाज की आवाज को सुनने और उसे आगे तक पहुँचाने का सशक्त मंच है। जब किसान अपने अनुभव साझा करते हैं, जब महिलाएं अपनी सफलताएं बताती है, युवा अपने विचार रखते हैं और श्रोता अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तब रेडियो वास्तव में समुदाय और समाज के बीच संवाद का पुल बन जाता है और यही संवाद समाज को जागरूक, सक्रिय और आत्मनिर्भर बनाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज तकनीक ने संवाद को और भी आसान बनाया है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन धैर्य पूर्वक सुनने की आदत कम होती जा रही है। हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, हमें ये याद रखना होगा कि अच्छी बातचीत की शुरुआत बोलने से नहीं बल्कि सुनने से होती है। जब हम पूरी बात समझ लेते हैं तभी हमारा उत्तर भी सार्थक होता है।
1: बिल्कुल।
0: जागृति जी, कई बार किसी दुखी, अकेले या परेशान व्यक्ति को सलाह की नहीं बल्कि एक ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो उसकी बात को ध्यान से सुन सके। किसी की पीड़ा को सुनना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना और उसे ये एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है, यह भी समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण रूप होता है।
1: बिल्कुल अंजलि। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमें एक संवेदनशील, जागरूक और मजबूत समाज बनाना है श्रोताओं, तो हमें बोलने के साथ साथ सुनने की

0: संस्कृति भी विकसित करनी होगी। सुनना सम्मान है, विश्वास है, सहभागिता है और सामाजिक उत्तरदायित्व है। जब परिवार एक दूसरे को सुनेगा, जब समाज हर वर्ग की आवाज को महत्व देगा, जब ग्राम सभा में हर नागरिक की बात सुनी जाएगी, जब युवा, महिलाएं, किसान और बुजुर्ग अपनी बात निडर होकर रख सकेंगे और उन्हें ध्यान से सुना जाएगा, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज मजबूत हो पाएगा। हम यही कह सकते हैं श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किसी भी समाज की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वहाँ कितने लोग बोलते हैं, बल्कि इस बात से होती है अंजलि कि वहाँ कितने लोग एक दूसरे को सम्मान पूर्वक सुनते हैं। सुनना केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि विश्वास, संवेदना, अपनापन और जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम केवल उसकी समस्या नहीं समझते, बल्कि उसके जीवन, उसके संघर्ष और उसकी उम्मीदों को भी समझने लगते हैं। और यही समझ समाज को जोड़ती है और यही जुड़ाव सच्चे स्वराज की नींव बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सुनना केवल एक आदत नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है।
0: बिल्कुल,
1: जिस समाज में लोग एक दूसरे को सुनते हैं वहाँ विश्वास, सहयोग और विकास अपने आप पड़ता है। सच्चा स्वराज केवल अपनी बात कहने में नहीं श्रोता साथियों, बल्कि दूसरों की बात को सम्मान पूर्वक सुनने में भी कहलाता है।
0: बिल्कुल, सच्चा स्वराज केवल अधिकारों की बात नहीं करता अंजलि, बल्कि कर्तव्य को याद दिलाता है। और अगर बोलना हमारा अधिकार है तो सुनना हमारा कर्तव्य भी है श्रोताओ। जब समाज में सुनने की संस्कृति विकसित होगी तब संवाद मजबूत होगा।
1: बिल्कुल,
0: विश्वास बढ़ेगा, मतभेद कम होंगे, समस्याओं के समाधान सरल होंगे और विकास की दिशा और अधिक समावेशी बनेगी।
1: जी हाँ,
0: यही वो संस्कृति है जो लोकतंत्र को जीवंत बनाती है और समाज को आत्मनिर्भर तथा संवेदनशील बनाती है। तो श्रोताओ, सामुदायिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ हर आवाज का महत्व है। जब गांव की चौपाल, ग्राम सभा, मोहल्ले की बैठक, विद्यालय, परिवार और सामुदायिक रेडियो, ये सारे मंच लोगों की बात सुनने का माध्यम बनते हैं अंजलि।
1: बिल्कुल,
0: तब केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि विश्वास, सहयोग और साझेदारी का निर्माण होता है और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है और यहीं से स्वराज का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में उतरता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, एक जागरूक समाज वही होता है जहां हर आवाज को महत्व मिले, हर व्यक्ति ये महसूस करे कि उसकी बात अनसुनी नहीं होगी। इसलिए श्रोता साथियों, हम केवल बोलने वाले नहीं बल्कि समझदारी से सुनने वाले नागरिक बनने का भी संकल्प लें, क्योंकि जब समाज एक दूसरे को सुनना सीख जाता है तब संवाद मजबूत होता है, रिश्ते गहरे होते हैं और विकास की राह अधिक समावेशी, संवेदनशील और सकारात्मक बनती है। सुनने की यह छोटी सी आदत श्रोता साथियों, यकीन मानिए, एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की मजबूत शुरुआत बन सकती है।
0: बिल्कुल, और कहना चाहेंगे श्रोता साथियों आपको कि बोले गए शब्द कुछ समय तक हमें याद रहते हैं, लेकिन मन से सुनी गई बातें जीवन भर रिश्तों में विश्वास बनकर रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आइए सुनने की इस सुंदर संस्कृति को अपने परिवार, अपने गाँव, अपने समाज और अपने देश की पहचान बनाए। यही सामाजिक जिम्मेदारी है और यही मानवीय संवेदना है और यही सच्चे स्वराज की सबसे मजबूत आधारशिला है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों, इसी विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे विदा लूंगी और हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विचार, नए विषय और नई प्रेरणा के साथ में। तब तक सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जब हम एक दूसरे को दिल से सुनते हैं तभी समाज दिलों से जुड़ता है और जब समाज जुड़ता है तभी सच्चे अर्थों में स्वराज साकार होता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी बातें ढेर सारी हो गई हैं, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सुबह जल्दी उठने की परंपरा और उसके स्वास्थ्य लाभ को लेकर।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों की दिनचर्या का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही हैं।
0: जी हाँ,
1: वागड़ क्षेत्र के गांव में पहले सूर्योदय से पहले उठना केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन का नियम था। खेतों की ओर जाने वाले किसान, जंगल से चारा या लकड़ी लाने वाली महिलाएं, पशुओं की देखभाल करने वाले परिवार और स्कूल जाने वाले बच्चे सभी अपने दिन की शुरुआत सुबह की ताजी हवा और उगते सूरज के साथ करते थे।
0: जी बिल्कुल,
1: दिनचर्या केवल काम के लिए नहीं थी बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का भी एक स्वाभाविक तरीका थी। आज मोबाइल, देर रात तक जागने की आदत और बदलती जीवन शैली के कारण बहुत से लोग देर तक सोते रहते हैं और देर से उठते हैं। इसका असर मनीषा धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, काम करने की क्षमता और मानसिक संतुलन पर भी दिखाई देने लगा है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सुबह जल्दी उठने की परंपरा और स्वास्थ्य लाभ को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि पुराने समय में लोगों के पास आधुनिक सुविधाएं कम थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य अक्सर अंजलि जी बेहतर रहता था।
1: बिल्कुल,
0: इसका एक बड़ा कारण यह भी है श्रोता साथियों कि वे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीते थे। हम देखते हैं अंजलि जी कि वे सुबह जल्दी उठते थे, ताजी हवा लेते थे और कुछ समय स्वयं के साथ बिताते थे। साथ ही श्रोता साथियों, हल्का व्यायाम या खेतों में पैदल जाना, समय पर भोजन करना और रात को जल्दी सोना, यही सभी श्रोता साथियों उनकी स्वास्थ्य जीवन शैली का आधार थी।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि विज्ञान भी मानता है कि शरीर की अपनी जैविक घड़ी होती है। जब हमारी दिनचर्या सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास रहती है तो शरीर में कई कार्य बेहतर ढंग से चलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, यही बात करें सुबह की ताजी हवा के महत्व की तो श्रोता साथियों, सुबह का वातावरण अपेक्षाकृत शांत और स्वच्छ होता है। इस समय टहलने, गहरी सांस लेने या हल्की शारीरिक गतिविधि करने से शरीर को ताजगी महसूस होती है।
0: जी हाँ,
1: यदि गांव में पेड़ पौधों के बीच या खेतों की ओर पैदल चला जाए तो मन भी शांत होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह जल्दी उठने वाले लोग अक्सर दिन भर अधिक व्यवस्थित महसूस करते हैं। उन्हें अपने काम की योजना बनाने का समय मिलता है और जल्दबाजी कम होती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सुबह का शांत वातावरण मन को स्थिर करने, ध्यान लगाने, प्रार्थना करने और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने का अवसर देता है।
0: जी
1: हाँ, इससे तनाव कम करने में भी मदद मिलती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि बच्चों के लिए ये आदत क्यों जरूरी है इसकी, तो हम देखते हैं कि यदि बच्चे समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें तो वे स्कूल के लिए बिना जल्दबाजी के तैयार हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें नाश्ता करने का समय मिलता है और पढ़ाई पर ध्यान लगाने में भी आसानी होती है। हम देखते हैं कि मोबाइल या टीवी देखने के कारण देर रात तक जागना बच्चों की नींद और दिनचर्या दोनों को प्रभावित करता है, इसीलिए परिवार को मिलकर अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, यही बात आती है कि गांव में महिलाएं पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाती है। यदि उनकी दिनचर्या संतुलित हो और वे सुबह थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकाले श्रोता साथियों, तो वे दिन भर अधिक सक

0: थकरी महसूस कर सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: सुबह कुछ मिनट पैदल चलना, हल्का योग, गहरी सांस लेना या शांत वातावरण में बैठना उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे यहाँ के क्षेत्र में खेती और मेहनत वाला जो काम है वो बहुत अधिक होता है। गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी काम शुरू करना शरीर पर पड़ने वाले अधिक ताप के प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। सुबह के समय में खेतों में काम करना अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक होता है और दिन की ऊर्जा भी बनी रहती है।
1: जी हाँ,
0: हमारे गांव के कई बुजुर्ग मनीषा आज भी सूर्योदय से पहले उठते हैं। वे कहते हैं कि नियमित दिनचर्या, समय पर भोजन और सुबह की शुरुआत प्रकृति के साथ करने से जीवन अधिक संतुलित लगता है।
1: जी हाँ,
0: उनके अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि अच्छी आदतें किसी दवा से कम नहीं होती।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातें चल ही रही हैं और आगे भी हम ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि सुबह जल्दी उठने की जो हमारी परंपरा है उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या लाभ है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, सुबह जल्दी उठने की आदत को हमें विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी आदत जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन छोटे छोटे कदम हमारी मदद अवश्य कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो रात को समय पर सोने का हमें प्रयास करना है, सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करना है, सुबह का अलार्म एक निश्चित समय पर रखना है।
1: जी हाँ।
0: उठते ही कुछ मिनट ताजी हवा में जाएं, हल्का व्यायाम, प्रार्थना का ध्यान रखें, पौष्टिक नाश्ते के साथ ही दिन की शुरुआत हमें करने की जरूरत है। श्रोता साथियों, सुबह उठना तभी लाभकारी होगा मनीषा जब पूरी नींद भी ली जाए और केवल कम सोकर जल्दी उठने वाली जो चीजें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है। वयस्कों को सामान्यतः पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है और बच्चों और किशोरों को उससे भी अधिक। इसलिए लक्ष्य केवल जल्दी उठना नहीं बल्कि समय पर सोना और पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वागड़ की संस्कृति हमें प्रकृति के साथ चलना सिखाती है। यहाँ सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज, मंदिरों की घंटी, पशुओं की देखभाल और खेतों की ओर बढ़ते कदमों से होती रही है। यह केवल एक परंपरा नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि संतुलित जीवन जीने का एक तरीका है। यदि हम आधुनिक जीवन में भी इस परंपरा के अच्छे पहलुओं को अपनाएं तो अपने स्वास्थ्य और परिवार दोनों के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से कि बदलते समय के साथ हमारी जीवन शैली बदलना स्वाभाविक है, लेकिन हर बदलाव लाभदायक हो यह जरूरी नहीं। कुछ पुरानी परंपराएं ऐसी हैं जिनकी उपयोगिता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जो हमें समय का सम्मान करना, प्रकृति के करीब रहना और अपने शरीर व मन की देखभाल करना सिखाती है।
1: जी हाँ।
0: स्वस्थ जीवन किसी एक दवा, एक भोजन या एक व्यायाम से नहीं बनता, यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है। यदि परिवार के सभी सदस्य समय पर सोने और सुबह समय पर उठने की संस्कृति अपनाएं, तो घर का वातावरण अधिक अनुशासित, सकारात्मक और ऊर्जावान बन सकता है। आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हर दिन की शुरुआत जल्दबाजी से नहीं बल्कि शांति, अनुशासन और नई ऊर्जा के साथ करेंगे। यही स्वस्थ शरीर, शांत मन और खुशहाल परिवार की मजबूत नींव है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन, पद या सुविधा नहीं है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य और संतुलित दिनचर्या है। जब हमारी सुबह सकारात्मक सोच, ताजी हवा, समय की पाबंदी और आत्म अनुशासन के साथ शुरू होती है तो उसका प्रभाव हमारे पूरे दिन और व्यवहार और कार्य क्षमता और साथ ही मानसिक स्थिति पर दिखाई देता है। यही कारण है श्रोता साथियों कि हमारे पूर्वज दिन की पहली किरण को नई शुरुआत का प्रतीक मानते थे और सुबह के समय को मूल्यवान समय समझते थे।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं अंजलि जी कि तकनीकी ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही देर रात तक जागने, अनियमित भोजन, भागदौड़ भरी दिनचर्या जिसे चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में हम अपनी पुरानी अच्छी परंपराओं को आधुनिक समझ के साथ फिर से अपनाए श्रोता साथियों, तो यह हमारे परिवार और समाज दोनों के लिए लाभकारी होगी। सुबह जल्दी उठने का अर्थ केवल जल्दी जागना नहीं है बल्कि अपने शरीर को पर्याप्त आराम देना, समय का सही उपयोग करना और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना है।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि वागड़ की संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने वाला जीवन अधिक संतुलित और सुखद होता है।
1: जी हाँ।
0: सूरज का स्वागत करना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, स्वच्छ वातावरण में कुछ समय बिताना और अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करना, ये छोटी छोटी बातें जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है।
1: जी हाँ।
0: यह आदत श्रोता साथियों केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहती बल्कि परिवार में अनुशासन, बच्चों में अच्छी आदतें और समाज में सकारात्मक वातावरण भी विकसित करती है।
1: बिल्कुल।
0: हम अपने घरों में ऐसी दिनचर्या बनाने का प्रयास करें जहां रात को समय पर विश्राम हो और सुबह नई ऊर्जा, नई आशा और नए उत्साह के साथ जीवन का स्वागत किया जाए। जब हर घर स्वस्थ आदतों को अपनाएगा तब पूरा गांव स्वस्थ होगा। जब गांव स्वस्थ होगा तभी हमारा वागड़ और हमारा जो देश है वो वास्तव में समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बन सकेगा। इसलिए श्रोता साथियों, सुबह उठने की जो ये परंपरा है वो हमारे स्वास्थ्य को कई सारे लाभ पहुंचाती है। तो हमें फिर से इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाना होगा और हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी इस परंपरा के बारे में बताना है। तो आशा करते हैं कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, बागड़ी

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। एक ऐसा मंच साथियों जहां हम सपनों को हकीकत में बदलने की बात करते हैं। लेकर हाजिर हो चुकी हूं एक नए विषय के साथ में आज के इस कार्यक्रम को। साथियों, आज का हमारा विषय है छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। साथियों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये सच भी है क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे बड़े भविष्य की नींव बनती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। जानेंगे दोस्तों कि छोटी आदतें क्या होती है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव कर सकती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, और मनोरंजन के बिना तो ये कार्यक्रम भी अधूरा है। साथियों, तो आइए सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको विषय बता दिया है कि आज हम बात कर रहे हैं छोटी आदतें बड़ा बदलाव लेकर आती है, इस विषय को लेकर। दोस्तों अक्सर हम ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा मौका, बड़ा फैसला या बड़ा जोखिम। लेकिन साथियों सच तो ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से ही आते हैं। छोटी आदतें क्या है, जैसे कि रोज 10 मिनट पढ़ना, समय पर उठना, अपने लक्ष्य लिखना, किसी की मदद करना और रोज खुद से एक सकारात्मक बात कहना। श्रोता साथियों, दोस्तों ये सब चीजें छोटी लग सकती हैं, पर जब ये आदतें बन जाती हैं तो यही आपकी पहचान भी बन जाती है। हम देखते हैं दोस्तों कि यही होती है छोटी आदतें। बात करें अगर आदतों की ताकत की तो श्रोता साथियों, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम रोज कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों किसी ने सही कहा है कि हम रोज जो करते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर आप दोस्तों रोज थोड़ी मेहनत किसी चीज को लेकर करते हैं तो एक दिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक छात्र है जो रोज 20 मिनट पढ़ता है साथियों, और दूसरा छात्र सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ता है, तो आपके हिसाब से आगे कौन जाएगा? स्पष्ट है श्रोता साथियों कि वो छात्र जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि छोटी आदतें बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, क्योंकि एक छात्र ऐसा है जो रोज रोज नहीं पढ़ता, लेकिन एक छात्र ऐसा है जो रोज रोज पढ़ता है। तो ऐसे में वर्तमान में हमारी समस्या यही है दोस्तों कि हम जब किसी काम को कर रहे होते हैं तो पहली बार में हम उस काम को एकाग्रता के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी आदत में नहीं है। लेकिन वही दोस्तों अगर हम उसे एकाग्रता के साथ करेंगे, एक बार हमने किया, दूसरी बार हमने किया, तीसरे बार में वो हमारी आदत बन जाएगी। क्योंकि हम जो काम रोज रोज करते हैं ना श्रोता साथियों, तो एक न एक दिन वो हमारी आदत बन जाती है, और यही छोटी आदतें आगे जाकर बड़े बदलाव लाती हैं श्रोता साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी चीजें जो होती हैं वो हमें डराती हैं, लेकिन जो छोटी आदतें और जो छोटी चीजें होती हैं वो हमें सहज बनाती है श्रोता साथियों। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना है, तो दिमाग हमारा डर जाएगा, यानी कि पढ़ने से पहले ही हमारे अंदर चिंता और भय घर कर जाएगा, और हम ये सोचने लगेंगे कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा कैसे, क्योंकि मैंने उसे कह तो दिया कि मैं 5 घंटे पढ़ लूंगा। लेकिन जब वो चीज आपकी आदत में ही नहीं है तो उस काम को आप करेंगे कैसे श्रोता साथियों? लेकिन अगर आप खुद से ये कहें कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, तो आपका दिमाग मान जाएगा श्रोता साथियों, और फिर श्रोता साथियों यही 15 मिनट रोज रोज के 1 घंटा बन जाएंगे। कह सकते हैं कि रोज जब हम धीरे धीरे 15 मिनट पढ़ेंगे श्रोता साथियों, तो कह सकते हैं कि वो 15-15 कब 30 हो जाएंगे, और कब वो 30-30-60 हो जाएंगे श्रोता साथियों, हमें पता ही नहीं चलेगा, और फिर वो हमारी आदत में रह जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे और हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, और छोटी आदतें किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव लेकर आती हैं, उस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं साथियों। तो आगे भी ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, क्योंकि दोस्तों असली उड़ान तो अभी बाकी है। तो आगे और भी बातें होंगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों, छोटी आदतें बड़े बदलाव किस प्रकार से लाती है, इस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और गीत से पहले दो उदाहरणों के माध्यम से हम समझ पाए थे श्रोता साथियों कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे हमारे प्रयास है वो जब हमारी जीवन शैली में हमारी आदत का रूप ले लेते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा संवर जाता है। जैसा कि हमने एक छात्र का उदाहरण भी लिया था। अब यही अगर बात करें श्रोता साथियों कि जीवन को बदलने के लिए क्या ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनानी है। जैसे कि दोस्तों, सुबह जल्दी उठने की आदत। दोस्तों, सुबह का समय जो होता है वो काफी शांत और सकारात्मक होता है। ऐसे में अगर आप किसी काम को करते हैं सुबह के समय में तो वो काम कह सकते हैं कि सफल भी होता है। इसलिए हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं श्रोता साथियों। इसी के बाद जो दूसरी आदत है वो हम अपना सकते हैं, कुछ नया सीखने की। यानी कि दोस्तों, आपको रोज कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वो एक शब्द हो सकता है, एक विचार हो सकता है या फिर एक कौशल हो सकता है। दोस्तों, इसी के आगे बात करूं लक्ष्य की, तो लक्ष्य को तो श्रोता साथियों हम सभी ही पाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको अपने जो गोल्स हैं उन्हें लिख कर रखना है। दोस्तों, लिखने से क्या होगा कि वो जल्दी पूरे होंगे, क्योंकि हम उस चीज को बार बार देखेंगे, हमें याद रहेगा कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। तो कह सकते हैं कि हम उसके लिए मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद श्रोता साथियों एक न एक दिन हम सफल जरूर होंगे और हम अपनी मंजिल को पार कर ही लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, रोज आपको तीन चीजें लिखनी चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें श्रोता साथियों बनाया है और हमारे अंदर जो भी गुण है वो ईश्वर से ही हमें प्राप्त किए गए हैं। तो हमें सबसे पहले तो दोस्तों ईश्वर का आभारी होना चाहिए। इसी के साथ आप खुद से ये कहें कि आप हर चीज में परफेक्ट हैं और आप हर काम को करने के लिए सक्षम हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कुछ ऐसे

सकारात्मक आदतें होती हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। और जब पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं दोस्तों, तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाऊं, तो एक लड़का था जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने फैसला किया कि वो रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा। साथियों, शुरुआत में उसे काफी मुश्किल लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मिनट भी कोई मुश्किल है क्या? लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, तो वो 10 मिनट भी हमें 10 घंटे के बराबर लगते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, वह रोज थोड़ा थोड़ा 10 मिनट पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा दोस्तों। फिर वही 6 महीने बाद वही लड़का क्लास में टॉप करता है। दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या देखा कि उस बच्चे का जीवन बदल गया सिर्फ एक छोटी सी आदत से। सिर्फ एक 10 मिनट पढ़ने की आदत से श्रुता साथियों, उस बच्चे ने क्लास में टॉप किया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कुछ छोटी मोटी आदतें होती हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं, उन्हें अपने जीवन में हमें जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, आदतें बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है श्रोता साथियों। जैसे कि आप छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। रोज एक ही समय पर दोस्तों आपको काम करने की आवश्यकता है, और अगर आप जब उस काम को पूरा कर ले तो आप खुद को इनाम भी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है दोस्तों, जिससे आप उस चीज को करने में प्रोत्साहित होंगे। गलती होने पर खुद को माफ भी कर ले, यानी कि पश्चाताप न करें, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि हर इंसान छोटी छोटी आदतें जब अपनाने लगता है तो एक समाज बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हम ये छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें देखकर भी इस चीज के बारे में सीख लेते हैं। हम देखेंगे कि जब हम ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे श्रोता साथियों, तो सिर्फ हम ही नहीं पूरा समाज बदल सकता है। जैसे कि कूड़ा कचरा न फैलाना, पानी बचाना, दूसरों का सम्मान करना, ये कुछ ऐसी छोटी चीजें होती हैं श्रोता साथियों, लेकिन इसके बदलाव जो हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो ऐसे में आपसे कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज से ही श्रोता साथियों, एक छोटी आदत को आप चुनिए और खुद से ये वादा कीजिए कि आप इस आदत को रोज निभाएंगे। क्योंकि दोस्तों, छोटी आदतें ही बड़े सपनों की उड़ान बनती हैं। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं, और मैं देख रही हूँ कि अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी और आप भी अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल होंगे। श्रोता साथियों, तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे एक नए विषय के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित